मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम सभा।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन मनुष्यक सब आलेख, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।

0: मनुष्यक सब दुर्गुणक समुच्चय जो कोनो एक व्यक्ति में देखबाक हो,
1: कृतज्ञ ओ व्यक्ति अछि जे उपकार के बिसर जाए। सन अधम क्यों नहीं अछि, पशु आ पक्षी पर्यंत उपकार के मन रखे छे। एंड्रोकल्स नामक क्यों दास स्वामी के गृह से भागि पड़ायल, बाट में एकटा सिंह भेटले, सिंहक नौह में पैघ कांट पैस गेल छलिक, रक्तस्राव होय छलिक, सिंह अत्यंत कष्ट में छल। एंड्रोकल्स कांट बाहर के पट्टी बांध देलके, ओकरा शुश्रूषा सँ सिंह स्वस्थ भेल। ओहि सिंह संगे एंड्रोकल्स कतेको मास व्यतीत कलक, संयोगात ओ पकड़ा गेल, स्वामीक सम्मुख आनल गेल, ओकरा प्राण दंड भेटले। तत्कालीन प्रथानुसार हिंसक पशु सँ ओकर वध कराओल जाय।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी। समस्या जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। हे गंगे, रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, पपीता की आधुनिक खेती। वाचन स्वर शांतनु कुमार मिश्र का है।
1: आज कृषि चर्चा के संग हम शांतनु कुमार मिश्र। किसान भाई, पपीता के आधुनिक पद्धति के संग खेती कैल जाए तो बेसी से बेसी उपजा प्राप्त कैल जा सकते हैं, संगे बेच कर नीक कैचा कमाल जा सकते हैं। किसान भाई, पपीता एक उष्ण कठ

0: दिए फल अच्छ, परंतु एकर खेती समशीतोष्ण आबोहवा में सेहो कैल जा सकैत अछि। बेसी ठंडा सँ पौध के विकास पर खराब असर पड़ित अछि, संगे एकर फल के बढ़वा रुक जाइत अछि। फल के पकवा व मिठास बढ़ो के लेल गर्म मौसम हेबा के लेल आवश्यक अछि। किसान भाई, पपीता के लेल हल्लुक दोमट माटि निक मानल जाइत अछि, जकर पीएच मान 6.0 सँ 7.5 के बीच हुए, एहन खेत के चयन कऽ पपीता के खेती करबाक चाही। संगे जल निकासी के निक व्यवस्था हुए, एहन खेत के चुनाव कऽ पपीता के खेती करबाक चाही। किसान भाई, पपीता के व्यवसायिक खेती करबाक लेल बीज द्वारा एकर खेती कयल जाइत अछि। एकर सफल उत्पादन के लेल बीज के क्वालिटी निक हेबाक चाही। बीज उत्तम चुनाव कऽ कऽ तकर बादे एकर खेती करबाक चाही। बीया बुआई के समय जून जुलाई सँ लऽ कऽ सितंबर आ फरवरी मार्च में एकर बुआई कयल जाइत अछि। किसान भाई, क्यारी 15 सेंटीमीटर ऊंच, 1 मीटर चौड़ा हेबाक चाही। क्यारी में गोबर के खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट काफी मात्रा में मिलेबाक चाही। किसान भाई, पपीता के पौध पहिने नर्सरी में एकर पौध के तैयारी कर लेबाक चाही। जखन पौध थोड़े पैघ भ जाय तो थल्ला उखाड़ कर पौध खेत में रोबाक चाही। किसान भाई, खेत के तैयारी में माटि पलट वाला हर सँ 2 सँ 3 जोताई केला के बाद कल्टीवेटर सँ 2 सँ 3 बेर जोताई करी, ओकर बाद खेत समतल कर लेबाक चाही। आ खेत समतल कऽ कऽ नीक जना आरा तैयार कर ली, तकर बाद मेड़ के ऊपर एकर रोपाई करबाक चाही। नीक तरह से तैयार खेत में 2×2 मीटर के दूरी पर 50×50×50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढा मई मास में खोद कर 15 दिन खुला छोड़ देबाक चाही, जैसे गड्ढा में नीक जना धूप लागे आ हानिकारक कीट मर जाए। ओकर बाद सब रंग के खाद देला के बाद ओहि में पौध लगेबा के चाही। माटि भरला के बाद पौध लगेबा के चाही। किसान भाई, उन्नतशील किस्म में पूसा ज्वाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, कोयम्बर 1, कोयम्बर 3 आदि किस्म के पौध लगेबा के चाही। ई किस्म बेसी से बेसी उपज दैत अछि। किसान भाई, ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौध के सिंचाई केला पर नीक उपज दैत अछि। पपीता के खेती के लेल 22 डिग्री सेल्सियस सँ 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होबाक चाही। किसान भाई, रेड लेडी 786 ई सबसे लोकप्रिय आ व्यवसायिक किस्म अछि, जे जल्दी फल दैत अछि आ वायरस के प्रति सहनशील अछि। पूसा डिलेशियस अधिक उत्पादन देबो वाला मीठा फल के किस्म अछि। आ आन किस्म में पूसा मेजेस्ट्री, ताइवान आ रांची अछि। इहो किस्म के खेती कयल जा सकैत अछि। खेत के नीक जना जोताई कऽ कऽ 1 फीट ऊंच आ 2 फीट चौड़ा मेड़ बना कऽ ओके ऊपर रोपाई करबाक चाही। पौध के दूरी लाइन से लाइन 7 फीट आ पौध से पौध के दूरी 5 फीट के अंतर पर रखबाक चाही। रोपण के लेल प्रति एकड़ लगभग 250 ग्राम बीया के आवश्यकता होइत अछि। नर्सरी तैयार भ जाय तकर बाद एकरा खेत में रोपाई करबाक चाही। थल्ला उखाड़ कर एकर रोपाई कयल जा सकैत अछि। किसान भाई, गड्ढा में सरल गोबर के खाद, नीम के खल्ली, सुपर फास्फेट मिला कर पौध शाम के समय में गड्ढा में देला के बाद पौध के रोपाई करबाक चाही। आधुनिक विधि में डीप सिंचाई का उपयोग करबाक चाही। खरपतवार आ पानी के ऐसा बचत होइत अछि, संगे खरपतवार नियंत्रण करैत रहबाक चाही। पपीता के आधुनिक खेती केला पर नीक उपज दैत अछि। एहि के संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा देल जाऊ। नमस्कार।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत

0: सत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, शिशु आहार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंदनी सिन्हा।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा, जो यहाँ की एक जानी मानी डाइटिशियन हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत का विषय होगा शिशु आहार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो

0: उसका उस समय आहार क्या होना चाहिए?
1: सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका आहार तो जैसे सबको पता है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोच्च होता है उसके लिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधे घंटे बाद ही हम बोलते हैं कि माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध पे बच्चे रहे तो सबसे बेस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को दूध नहीं आ पाता या दूध कम आता है, तो उस समय पे फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बच्चे को गाय का दूध आप दे सकते हैं।
0: माँ का दूध सबसे अच्छा आहार होता है, लेकिन यदि किसी माँ के स्तन में दूध यदि नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई पाउडर मिल्क वगैरह कोई ले सकता है?
1: हाँ, पाउडर मिल्क वगैरह ले सकता है। अच्छा। लेकिन आप एक बार अगर अपने मन से कुछ ना करें, डॉक्टर से एक बार पूछ के ही करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पाउडर मिल्क भी नहीं तो फिर गाय का जो दूध है वो सबसे बेस्ट है।
0: अच्छा, तो गाय का दूध सीधा लाना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला
1: नहीं, उसमें हम कुछ पानी मिला के देंगे, बिना मलाई वाला देंगे। अच्छा। और उसको एक बार छान के भी देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दूध गर्म किया और दे दिया, उसको हम लोग छाने तो सबसे बेस्ट है।
0: सीधे देने से वो गरिष्ठ हो सकता है ना?
1: हाँ, गरिष्ठ हो सकता है, पचाने में बच्चे को परेशानी होगी इसलिए।
0: अच्छा, पानी के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटे बच्चों को पहले कुछ दिनों तक पानी अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
1: नहीं, पानी अवॉइड करने को ही बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप उनको पानी दें। पानी अगर आपको बच्चे को देना भी है तो आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टार्ट करें, जब बच्चा 5 महीने का हो जाए उसके बाद आप पानी दें तो बेस्ट है।
0: 5 महीने तक बिल्कुल ना पानी
1: नहीं, आप मिल्क पे ही रखें बच्चे को। अच्छा। मिल्क पे ही रखें या मदर मिल्क पे है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी है तो पानी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमको देना पड़ता है तब उस टाइम पे हम बच्चे को जो है पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें ऐड ना करें। जो बहुत लोग कुछ कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, मिश्री विश्री ये वो, उन चीजों को हम ऐड ना करें तो अच्छा है।
0: जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, बच्चा परेशान है, तो उस केस में पानी देने में कोई हर्ज नहीं है?
1: उस चीज में हर्ज नहीं है, लेकिन हम बहुत मतलब कम क्वांटिटी में हम पानी दें, ज्यादा उस तरीके से नहीं कि हम बस पानी पिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना।
0: पानी तो नहीं, नल का पानी
1: नहीं, नल का पानी नहीं, वो हाँ फिल्टर्ड वाटर हो, बॉइल्ड वाटर हो तो वो अच्छा है।
0: ठीक है, तो 6 महीने तक तो आपने कहा कि माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद आहार में क्या परिवर्तन आ सकता है?
1: उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम एक फूड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड उसको बोला जाता है, कि जो कि फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि बस माँ के दूध से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो 6 महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बच्चे को अनाज जो है, जो घर का जो खाना है, सिंपल सी बात है, उसको हमको स्टार्ट करना है। लेकिन बस ये देखना है कि हमको उसको कैसे शुरू करना है। बच्चा 6 महीने का है, हम उसको लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दाल का पानी है, राइस वाटर है, सूप आप दे सकते हैं सारी सब्जियों को छान के। पालक का सूप बच्चे को दे तो बेटर है, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज्यादा होती है, विटामिन सी की नीड बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो आप सब सब्जियों को सूप बना के छान के पतला करके 6 महीने में आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हम बहुत कम करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1/2 to 1 teaspoon।
0: अच्छा,
1: इस मतलब तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ले रहा है तो हम इसको दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। स्टार्ट विद मतलब स्मॉल फीडिंग मींस 1/2 teaspoon to 1 teaspoon।
0: यानी कि जो हम लोग जो चावल खाते हैं जो काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, या दाल गाढ़ी दाल खाते हैं, उस तरह का उसको
1: नहीं,
0: भोजन
1: बिल्कुल नहीं। स्टार्ट विद क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद हम फुल लिक्विड डाइट पे आएंगे। जब 7वें महीने में बच्चा आएगा तो हम बच्चे को दूध वाली जो आइटम है, जैसे खीर का आइटम है, सूजी का पॉरिज हो गया बिल्कुल पतला बना के, कस्टर्ड हो गया बिल्कुल पतला बना के, ये खिचड़ी बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, या दाल आप उस टाइम दाल का सूप थोड़ा सा, इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो कितने दिनों के बाद हम उसको जो है पूर्ण आहार दे सकते हैं?
1: पूर्ण आहार जो सॉलिड फूड देंगे वो हम बच्चे को 1 साल के बाद देंगे, 12 महीने। नहीं तो जो 8 से 9 महीने का जो है वो भी पूरा सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा, बच्चे का खिचड़ी हो गया, मैस पोटैटो हो गया, सब्जियां मिक्स करके दें आप। 10-11 महीने का है तो दलिया है, ओट्स है, आप ये चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। रोटी जो है पूरा उबाल के, बॉइल करके, पीस के वैसे दे सकते हैं।
0: अच्छा, 1 साल हो जाने के बाद आपने कहा कि उसको जो है भोजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 साल तक के शिशु को नहीं दिया जाना चाहिए?
1: सबसे पहला चीज तो ये है कि जो हैवी स्पाइसी फूड दी है, ज्यादा फ्राइड आइटम नहीं बच्चे को देना है, ज्यादा स्पाइसी आइटम बच्चे को नहीं देना है, ज्यादा फ्लेवर आइटम नहीं देना है, जैसे बिस्किट वगैरह अपना दें तो बेस्ट है। जो हमने बताया कि एक नॉर्मल घर का अनाज, सब्जी, फल और दूध पे बच्चे को रखना है हमको 1 साल तक।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को शिशु आहार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे वंदना। आज जिन लोगों के स्वर में आपने भक्ति संगीत सुना वे थे हरिहरण, अनुराधा पौडवाल, नंदलाल पाठक, आलोक गांगुली। और इसी के साथ वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुनी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, प्रमुख स्वर ए हरिहरण का है।
6: अड़तालीस 48

जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रातः 8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात। प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा का प्रसारण करेंगे प्रातः 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे प्रातः 8:48 पर। अंजुमन यह उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर। प्रातः 10 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। विद्यापति गीत सुनवाएंगे प्रातः 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सुनिएगा पंडित जसराज का गायन। समय होगा प्रातः 11 बजे। प्रातः 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

दोपहर के 12 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुनिएगा दोपहर के 12:30 पर। दोपहर 1 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण होगा। देशभक्ति गीत के अंतर्गत आज सुनिएगा AR रहमान के स्वर में स्वदेश फिल्म का गाना। समय होगा दोपहर के 1:10 पर। दोपहर 1:15 पर हम सुनवाएंगे फिल्म संगीत। दोपहर 2 बजे आप सुन पाएंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे दोपहर 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर रोजगार सूचना। दोपहर 2:15 पर सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 2:30 पर। पहली सभा के अंत में दोपहर के 3 बजे सुनिएगा लोकगीत। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। समय होगा संध्या 5 बजे। संध्या 5:40 पर सुनवाएंगे फिल्म संगीत। विद्यापति गीतों का आनंद ले पाएंगे आप संध्या 6:10 पर। संध्या 6:25 पर सुनिएगा मैथिली संवाद। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर अनुभव के चश्मा सा। चर्चा का विषय होगा बुजुर्ग हमारे धरोहर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7 बजे। संध्या 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। साथ ही आप सुनेंगे जिले की हलचल। समय होगा संध्या 7:47 पर। संध्या 7:52 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि के 8 बजे सुनवाएंगे संसद समीक्षा सिंगरहार। यह कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और 9:15 पर सुनेंगे उर्दू खबरें। पब्लिक स्पीक यह कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि के 9:30 पर। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात्रि के 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000 युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुम् अर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारंभानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्य प्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटक नगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां 4th अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता।

0: नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और साथ में आज के संक में मैं हूँ कुशल। मणिकांत जी आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार कुशल जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करै छी सुविचार से। आजुक सुविचार,
1: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से, झुको केवल उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है, यह है चाणक्य नीति।
0: और सुविचार के बाद उनटबै छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात 3 जुलाई क्या विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नजर।
1: आज ही के दिन सन 1492 में प्रसिद्ध अनिवेशक क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने अपनी पहली अटलांटिक महासागर यात्रा शुरू की थी। आज ही के दिन सन 1949 में बास्केटबॉल की दो प्रमुख लोगों बीएए और एनबीएल के विलय से नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। और आज ही के दिन सन 1993 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक स्वामी चिन्मयानंद का निधन हुआ था। और 1993 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। और 1778 में आज ही के दिन इटली के मिलान में दुनिया का सबसे पुराना ओपेरा हाउस ला स्काला खुला। सन 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। सन 2005 में आज ही के दिन मॉरिटानिया में सैन्य तकला पलट हुआ और राष्ट्रपति को हटा दिया गया। सन 1911 में आज ही के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। सन 1926 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता टोनी बेनेट का भी जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के भाई पंडित मणिराम का निधन आज ही के दिन सन 2008 में हुआ। और आज ही के दिन यानी 3 अगस्त को दुनिया भर में लोकगीत और लोक संस्कृति को मनाया जाता है। और आज ही के दिन अमेरिका में नेशनल वाटर लेमन डे भी मनाते हैं।
0: तो इछल आजुक इतिहास, और इतिहास के बाद वर्तमान में अभी आई श्रावण मासक पहिल सोम संगे मौना पंचमी से होए। आई सा नवविवाहिता जे मधुश्रावणी पूजती हुनकर पावन शुरू भ गेलन, और ठाम ठाम आई नाग देवता के अलग सा पूजा सेहो कयल जा रहल छन। कार्यक्रम में हमरा लोकन आगा बढ़ी तैसे पहिने किछु गप करी जे वर्षा के जे अभाव अपना सब ओतः भेल अखन तक, सौन मास बीत रहा है और वर्षा अखनो तक नहीं के बराबर भेल है, ताहिसँ कृषि पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते संगे पेयजल के जे स्थिति छै सेहो अत्यंत चिंताजनक भ गेलै, और तकरा सबक लेल कुल मिलाकर जिम्मेवार मनुष्य किया तऽ प्रकृति के संरक्षण में हमरा लोकन जे छै से सहयोग नहीं दऽ पाबै छी, प्रकृति के संग जना चलबाक चाही से नहीं चल पबै छी, और पर्यावरण के प्रदूषित करय में हम सब जी जान लगा देने छी, तो एकरा सब पर हमरा सब के चिंतन करबाक चाही, और प्रकृति केना संरक्षित रहे ते पर में हमरा सब के चिंतन मनन मंथन करैत रहबाक चाही, और ओकरा जे समस्या के समाधान छै 23 दिस डे उठेबाक चाही कि नहीं।
1: और आगे हम लोग कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और भी विषय है कि खेल भावना जीत से बढ़कर सीख, कि बहुत से लोग हैं खेल खेलने के बाद जीतते हैं तो सिर्फ जीत से ही मतलब रखते हैं, हारते हैं तो उदास हो जाते हैं।
0: नहीं नहीं, नहीं हेबाक चाही, हार जीत में कोनो अंतर नहीं छै, खेल के भावना हेबाक चाही, और खेल भावना से अगर अहाँ खेलाइ छी तऽ केओ एक आदमी तो जितबे करते, केओ एक आदमी हारबे करते, कोनो एकटा टीम जितते कोनो एकटा टीम हारते, तो एहि सब पर बहुत बेसी जे छै से उदास नहीं हेबाक चाही अगर हारि जाइ छी तऽ, आ जीत जाइ छी तऽ ओहू में अत्यधिक खुशियो नहीं हेबाक चाही।
1: तो आगे हम लोग इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने कार्यक्रम में सुनते हैं एक मैथिली सुगम संगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: ऐसा पूर्व व्याख्यान हमारा लोग सुन रहे छो विद्यापति के एते और स्वर छलन विनय कुमार झा के, बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
3: और कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।

0: शर्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: ऐसे पूर्व अखन हमरा लोकन सुन रहल छलहुँ विद्यापति के एते और स्वर छलन विनय कुमार झा के, बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
2: और कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।
1: नमस्कार। राज्य में दूटा और औद्योगिक पार्क बनाल जाए, उद्योग विभाग केंद्र सरकार के प्रस्ताव पठा दल गया। मुजफ्फरपुर आ दरभंगा में एकरा लेल 1050 एकड़ भूमि चिन्हित कर लेल गया। एत निर्माण क्षेत्र के कंपनी के प्राथमिकता दिल जतन। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या के तहत एकरा विकसित कैल जाए। बिहार भव्या योजना के पहल चरण के लेल केंद्र सरकार के शुक्र दिन दूटा औद्योगिक पार्क के लेल प्रस्ताव पठा दलक है। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ आ दरभंगा में 350 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित करवा की योजना है। प्रस्ताव के मंजूरी भेटवाक बाद केंद्र सरकार एतः विकास कार्य के लेल प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया अर्थात कुल 1050 करोड़ रुपया के मदद देत। ऐसे औद्योगिक पार्क आ लग पासक आधारभूत संरचना विकसित कैल जाए। एकर अलावा अतिरिक्त बाहरी कनेक्टिविटी के सेहो नीक बनेबाक लेल प्रोजेक्ट लागत के 25% तक अतिरिक्त सहायता भेट सकैए। राज्य के 9 डिग्री कॉलेज में संविदा पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर 10 अगस्त के कॉलेज में योगदान देता। उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी कर दलक। आई सोन मासक पहल सोमवारी है। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वर स्थान में सोन मासक पहल सोमवारी के तैयारी पूरा कर लेल गेल छल आ आई भोर से भक्त लोकनिक ओत आगमन हुआ लागल और महादेव के जलाभिषेक कैल जा रहा है। उम्हर कपिलेश्वर स्थान, विदेश्वर स्थान, गंगेश्वर स्थान, सिद्धेश्वर स्थान, दरभंगा शहर स्थित बाबा माधवेश्वर नाथ, पंचानाथ, हजारीनाथ सहित अनेक शिवालय में प्रातःकाल से लोकक भीड़ लागल है और महादेव के जलाभिषेक कैल जा रहा है। बोलबम हर हर महादेव के नारा से वातावरण गुंजायमान भ रहा है। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर अम्बेडकर सभागार में कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान 2026 के शुभारंभ भेल। कार्यक्रमक सोझ प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैल गेल। एहि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में के 1 करोड़ से अधिक युवा के संबोधित करैत नशा मुक्त भारत के निर्माण के आह्वान कैलन। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्त विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक के आयोजन सेहो कैल गेल। इस अवसर पर मंत्री मदन सहनी, विधायक मुरारी मोहन झा, विधायक राजेश मंडल, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ जल्ला रेड्डीक संग अनेक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित छलाह। मध्य विद्यालय तारालाही परिसर में कल इनर व्हील क्लब दरभंगा एवं एसवी हॉस्पिटल लहरियासराय के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर के आयोजन कैल गेल। दुपहरिया 2 बजे से सांझ के 5 बजे तक चलल ए शिविर में 500 से अधिक मरीज के स्वास्थ्य सेवा दिल गेल। दरभंगा सहित अन्य नगर निकाय के सफाई कर्मी के बेमियादी हड़ताल काल्हि हो चलित रहल। ऐसा कचरा के उठाव नहीं भेला से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सब मोहल्ला, गली आ मुख्य सड़क पर कचरा के अंबार लग गेल। नगर निगम के अधिकारी सफाई कार्य के लक बहुत गंभीर छथि। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
3: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं।

0: तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। नव रैयाम एवं सकरी चीनी मिल के स्थापना के उद्देश्य से कुसियार क्षेत्र विकास के लिए विशेष अभियान चलाल जा रहा है। एकरा अंतर्गत जिला दरभंगा जिलाक सब प्रखंड के पंचायत में किसान के बीच व्यापक जनजागरूकता, गन्ना किसान पंजीकरण आ चीनी मिल सहकारी सस्ता अभियान संचालित कयल जा रहा है। एखन तक 13,000 से अधिक किसान दरभंगा जिला में कुसियारक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेलन है। ये जानकारी कल जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देलन। वो कहलन जे प्रत्येक चीनी मिल के सफल संचालन के लिए लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्र में कुसियारक खेती आवश्यक होते है। एक ध्यान में रखते जिला में कुसियारक खेती के रकबा बढ़ेबाक आ अधिक से अधिक किसान के कुसियार उत्पादन एवं सहकारिता से जोड़बाक लेल विशेष अभियान चलाल जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्नातक कला विज्ञान एवं वाणिज्य के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा 10 अगस्त से शुरू हो जाए। 2024-2028 सत्रक ई परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित कयल जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा केंद्र के सूची जारी कर दल गया है। उम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य सत्र 2026-30 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए छात्र छात्रा के एक बार फिर से आवेदन करवाक मौका दिल गए हैं। पूर्व में आवेदन कैल जे वंचित रह गला छात्र छात्रा उनका 3 से 6 अगस्त तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करवाक सुविधा दिल गए हैं। आई मौना पंचमी है। कल साँझे से नवविवाहिता लोकन फूल लोढ़बाक लेल गेली और ठाम ठीम गीतनाद से वातावरण गुंजायमान होत रहल। मधुश्रावणी अखन से लक मधुश्रावणी तक चल वाला पावन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बनल रहत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मी के लिए 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन 2 से 3 अगस्त तक कयल जा रहा है। एकरा अंतर्गत काल विभिन्न खेल स्पर्धा के आयोजन कयल गेल। एक संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: अब एक नजर मौसम पर। लोका उपस्थित छत कुशल।
3: मौसम संबंधित में आज बात करते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्त

0: समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 1 से 5 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि 3 और 4 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सीवान, पूर्वी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। शेष स्थानों पर पूर्वानुमानित अवधि में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के समय आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रह सकते हैं, अन्य समय आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% तथा दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 45% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है।
1: तो इछल मौसम पूर्वानुमान वर्षा के प्रतीक्षा हमरा लोकन कह रहल छी, जतेक जल्दी भ जाए ततेक बढ़िया। और एखन वर्षा के अभाव में बहुत ठाम जे छै से धान रोपनी पछुआएल एखनो नहीं भेलै। बहुत ठाम तो पंपिंग सेट आ कि कतौ कतौ नहर से आब जल भेटऽ लगलै है, तो ओहि सब से जे छै से पटौनी कऽ कऽ कहुना लोक रोपलन है, लेकिन ओहो पानि के अभाव में जे छै से पीड़ा रहल है। तो वर्षा हुए, वर्षा भेला से मात्र खेतिए नहीं, सब चीज पर ओकर असर पड़े छै। मानव जीवन पर, पशु पक्षी जे छै तिनका पर, सब पर असर पड़े छै। और जे धरातल के भीतर जलस्तर अइ, भूमिगत जलस्तर, ओहो बहुत नीचा चल गेलै अपना सब ओकर, तो से अगर वर्षा के अभाव रहते तो ओ और नीचा से नीचा होइत चल जायत और पेयजल के संकट और बेसी गंभीर होइत चल जायत। तैं वर्षा के होयब जे छै से बहुत आवश्यक छै। गपशप हम सब करित रहब, लेकिन हमरा लगे जे बड़ी काल से गीतनाद नहीं भेले है, तो हमर श्रोता जे छथि से गीतनादक प्रतीक्षा करित रहै छथि। और रेडियो सेट पर अगर गीत नहीं बजै छै तो हुनका सबके कने मोन झूस भ जाइ छन, तो से हम झूस किया हो दुवेन भोरे भोर। आओ सुनी सुंदर सनक ई फिल्म संगीत।

0: बहुत सुंदर ही गीत समसामी गीत वर्षा हुआ कि नहीं हुआ लेकिन गीत से हमरा लोग वर्षा के अनुभूति से कर रहा छे और हेबे करत आशावादी रहबाक चाहिए वर्षा हेबे करत एहन नहीं छे आइयो मेघ लागल है आ हम सब निश्चित रूप से आश रखे छी जे वर्षा हैत और हमरा सब से हर्षित पुलकित है ओहि से और चर्चा करी छलो अपना सब खेल के खेल एखन पूरा विश्व में धूम मचेने तुरंत से राष्ट्रमंडल खेल के समापन भेलै है और ओहिमे क्यों जीतल हेतै क्यों हारल हेतै लेकिन खेलले है तो दुनू तो जीत और हार ई कोनो चीज नहीं छे खेल के भावना जे छे खेल भावना वो मुख्य बिंदु छे अगर अहाँ खेल भावना से खेलाई छी और अपन लगन ओहिमे लगबै छी तो अहाँ जीतलों तैयो आ हारलों तैयो
1: और एक बात तो है कि हर प्रतियोगिता में केवल एक ही विजेता होता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी सभी असफल हैं हार भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव है हार हमें अपनी कमियों को पहचानने की शक्ति देता है उन्हें सुधारने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी देता है यदि व्यक्ति केवल जीतने के उद्देश्य से खेलता है तो हार मिलने पर वह निराश हो सकता है लेकिन यदि वह सीखने के उद्देश्य से खेलता है तो हर अनुभव उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन जाती है
0: छै है और जीत हार में कोनो अंतर नहीं छे हाँ तत्कालिक तो एक रति मन में जरूर भ जाए छे जे भाई हम हार गेलों एतेक मेहनत केलों है लेकिन हार गेलों लेकिन क्यों ने क्यों तो हार भी करते अहाँ नहीं हारितों तो हम हारितों हम हार गेलों तो अहाँ जीत गेलों तो ई चीज अहाँ के मन में राख पड़त आ पहिने से ही एक अगर अहाँ मन में रखने छी जे हमरा खेल के जीत हार के लेल बहुत बेसी जे छै से नहीं कर के हालांकि लक्ष्य तो रखबा के चाहिए जे हमरा जीतबा के लेकिन अगर अहाँ नहीं जीते छी तो इसे हतोत्साहित नहीं हेबाक चाहिए और अगला बेर फिर जोरदार ढंग से प्रदर्शन क के अहाँ ओकर जीत के लक्ष्य के हासिल करी ई प्रयास अहाँ के मन में हेबाक चाहिए
1: और जब खेल भावना की अर्थ की हम बात करते हैं तो ईमानदारी निष्पक्षता अनुशासन सम्मान और सहयोग की भावना के साथ खेलना चाहिए इसमें प्रतिद्वंद्वी को शत्रु नहीं है बल्कि प्रतियोगी माना जाता है खेल भावना हमें सिखाती है कि जीतने पर अहंकार न करे और हारने पर निराश न हो सच्चा खिलाड़ी वही है जो नियमों का पालन करे और अपने साथियों का सम्मान करे और विरोधी खिलाड़ी की भी सफलता का भी सम्मान करे
0: अनुशासन जे इसे जीवन में बहुत बड़का महत्व के चीज है और जो अनुशासित नहीं छी अहाँ तहन फिर किछ नहीं छी तहन कोनो सफलता अहाँ के लेल जे छै से कोनो मायने नहीं रखिए अनुशासन अपना जीवन में जे बना के रखे छथि ओ जीवन में सफल होते टा छथि अनुशासन ओ खेल के क्षेत्र में हुए कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हुए या कि घर में अहाँ रहे छी तो अपना अभिभावक लग में हुए अनुशासित रहब जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै कोनो नियम के संग अगर अहाँ बांधल छी तो अहाँ ओकर जे छै से जे कोनो काज के संपादन अहाँ करब से व्यवस्थित ढंग से करब अगर अहाँ अनुशासित नहीं छी अनुशासन अहाँ में नहीं है तो फिर सब चीज व्यर्थ है कोनो प्रतियोगिता आ कि कोनो खेल कि कोनो बात वो सब व्यर्थ भ जाए छै अगर अनुशासन में नहीं छी अहाँ तो
1: और इसलिए कहा जाता है कि खेल भावना जीत से बढ़कर सीख है जीत कुछ समय के लिए खुशी देती है लेकिन खेल से प्राप्त सीख कर जीवन भर साथ रहती है
0: सही है
1: और अगर खेल जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भी हमें बात सिखाती है जैसे अनुशासन का पालन करना समय का महत्व को समझना टीम भावना और सहयोग की भावना को विकसित करना कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना और सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ये सभी गुण केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि शिक्षा रोजगार और सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति की सफलता का आधार बनते हैं
0: ऐ सब बात के अगर अहाँ सिरोधार्ज कह लै छी तो अहाँ के जीवन में कखनो कोनो कष्ट के सामना नहीं करय पड़त अहाँ अगर संतोष अपना मन में धारण कर लै छी अगर आत्मविश्वास अपना मन में जगा लै छी अगर दीर्घ इच्छा शक्ति अपना भीतर आनि लै छी तो अहाँ जीवन के हर कदम में सफलता जे छै से हासिल करैत चलि जायब
1: और मणिकांत जी अगर हम लोग जीवन और खेल के संबंध की बात करें तो जीवन स्वयं एक खेल की तरह है जहाँ हर दिन नई चुनौतियाँ सामने आती हैं जिस प्रकार खिलाड़ी हार के बाद फिर से अभ्यास करता है

0: इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। खेल हमें सिखाती है कि हर कठिनाइयों के बाद एक नया अवसर आता है। जो व्यक्ति धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है।
1: करत करत अभ्यास ते जरबत होत सुजान, ई बात कहल गेल छै। और हमरा लोकन बहुत छोट प्राणी चुट्टी ओकरा से सीख सकै छी, जे ओ बेर बेर प्रयास करैया चढ़ के खसि पड़ैया, लेकिन अपना प्रयास के छोड़िए नहीं। एक बेर, दू बेर, चारि बेर, पाँच बेर, दस बेर, बीस बेर, और लगातार प्रयास जारी रखैए और अंत में वो सफल भए जाइए। तो से जहन चुट्टी सनक जंतु प्राणी ई काज कऽ सकैए, तो हम सब तो मनुख छी, हमरा लग में भगवान विवेक देने छथि, बुद्धि देने छथि, तो ओकर प्रयोग कऽ कऽ कोनो चीज के हासिल हम सब कऽ सकै छी, सफल भऽ सकै छी। आवश्यकता अइ बस धैर्य के, धैर्य और दीर्घ इच्छा शक्ति, ई दुनू चीज अगर अहाँ लग में अइ तऽ अहाँ कोनो चीज हासिल कऽ सकै छी, ओ खेल हुए कि पढ़ाई हुए आ कि जीवनक आने कोनो क्षेत्र हुए।
0: और अंत में यह स्पष्ट है कि खेल का वास्तविक उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि सिखाना और स्वयं को बेहतर बनाना है। जीत क्षणिक होती है, जबकि खेल भावना से प्राप्त संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि सफलता विमृता में स्वीकार करें और असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े। यह सीख हमें एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अच्छा नागरिक और बेहतर इंसान भी बनाती है।
1: हाँ, तो एक बार पुनः अपना श्रोता लोगन के, खास कर युवा जो छथि, हुनका सबके कहबनि जे खेल कतौ खेली, कोनो खेल खेली, तो खेल भावना से खेली और जीत हार के लेल चिंता बेसी नहीं राखी मन में। आब कार्यक्रम के आगा बढ़वे छी आ फेर गीतनाद दिस जे छै से डेग बढ़वे छी और सुनै छी सुंदर सनक एकटा और फिल्म संगीत।

0: सावन के महीना पवन करे शोर, बहुत सुंदर ई गीत एखन हमरा लोग सुनि रहल छलौं। आ ठीके, मेघ जतौ लागल हेतै तऽ तब मोर नचैत हेतै। तऽ कार्यक्रम में आगा बढ़ै छी और फिर किछ गप सप करै छी।
1: अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रामीण भारत भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार, भारत का गाँव का देश कहा जाता है। आज भी देश की लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके गांव की विकास के मुख्य धारा से जुड़े हों। वर्तमान समय डिजिटल युग का है, जहां सूचना और तकनीक ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऐसे में ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: से देखबा में आबि रहल है और गाँव में गाम अहाँ जतौ जतौ जायब तो देखबै जे ग्रामीण भारत जे है से आब डिजिटल सेवा के विस्तार में बढ़ रहल है। हर ठाम अहाँ के एकर उदाहरण भेट जायत, बैंक से पाई के निकासी हुए कि आधार कार्ड से पाई के निकासी हुए कि जमीनक कारोबार हुए आ कि अन्य कोनो चीज हुए, लोग ऑनलाइन सेवा में आ बड़ा निष्ठा और बड़ा तत्परतापूर्वक जे छै से लागल छथि। और डिजिटलकरण जे छै, डिजिटीकरण से पूरा भारत के गाम गाम में पसरि रहलै है।
1: और अगर डिजिटल सेवाओं के अर्थ का बात करें तो डिजिटल सेवाओं का आशय उन सेवाओं से हैं जो इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाती है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल दस्तावेज और आधार आधारित सेवाएं, कृषि संबंधी जानकारी तथा विभिन्न सरकारी पोर्टल की सेवाएं भी शामिल हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सीमित रही है। लोगों को छोटी छोटी सरकारी सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय और धन दोनों की ही हानि होती थी। डिजिटल सेवाओं के विस्तार में इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया है। अब ग्रामीण नागरिक अपने गांव से ही अनेक आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
0: घर बैसल जे छै से एकदम अहाँ सब काज कर सकै छी। और जना स्लोगन छलै जे कर लो दुनिया मुट्ठी

0: तो से वाला बात जे छे से छे अहां अगर अहां लग में एकटा मोबाइल है कि लैपटॉप है या कि कंप्यूटर है तो अहां दुनिया के कोनो काज जे चाहे छी से घर बैसल मोटा मोटी अहां कह सके छी अपवाद छोड़ कर।
1: और डिजिटल सेवाओं ने ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में भी नई संभावनाएं उत्पन्न की है। पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण छात्र भी ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर और ई पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी घर बैठे बैठे अब गाँव और कोविड 19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि डिजिटल माध्यम शिक्षा का प्रभावी विकल्प बन सकता है। विभिन्न शैक्षिक प्लेटफॉर्म तथा सरकारी पोर्टल ने लाखों विद्यार्थियों को घर बैठे बैठे, शहर हो या गांव या ग्रामीण क्षेत्र, घर बैठे बैठे शिक्षा उपलब्ध कराई है।
0: खाली पढ़ाइए नहीं, नौकरी से हो लोग आप घरे बैसल कर रहा है, अपना घर से जैसे से नौकरी करी छे, उनकर ऑफिस बम्बई में हो इनकी बंगलोर में,
1: हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम,
0: अपना घर में बैसल जैसे से अब लाखक लाख दरमाहा लोग पाइब रहा है, तो ई ग्रामीण भारत के लेल एक बहुत बड़का उपलब्धि है। और ई उपलब्धि जैसे से वह इंटरनेट और डिजिटल दुनिया जैसे से दौड़ ली है।
1: और आजकल आप देखते हैं कि घर बैठे बैठे लोग ऑनलाइन सामान भी मंगवा लेते हैं, और घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं जेब में पैसा हो या नहीं हो लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करके सामान ले लेते हैं। तो ये सेवाएं अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी और बढ़ रही है।
0: आप तो अहाँ गुपचुप खरीद ला जाए, खा ला जाए 5 रुपया के कि 10 रुपया के, तो ओहो ऑनलाइन पेमेंट जैसे से अहाँ कह सकै छी। ओकरो लग में जैसे से QR कोड रहै छै, ओकरा स्कैन कऽ कऽ अहाँ दऽ सकै छियै आ दैते छै लोक। पान खा ला जाउ तहू ठाम, चाह पीबऽ ला जाउ ततो। तऽ डिजिटल जे दुनिया छै ओहिमे शहरे नहि मात्र ग्रामीण भारत सेहो जे छै से आब कन्हासँ कन्हा मिला कऽ आगाँ बढ़ि रहलैए, और आवश्यकता छै जे ओकरा आओर तीव्रता देल जाए और विकास ओकरा कयल जाए।
1: और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक अधिक पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। जन्म प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन और राशन कार्ड तक अनेक और इससे भी अनेक सेवाएं अब ऑनलाइन सब उपलब्ध है।
0: देखू एकरा बारे में कही जे हरि अनंत हरि कथा अनंता, डिजिटल सेवा कतेक आगा तक बढ़ गया है, एकर विवरण जे करो लागब तो घंटो ओहि पर में समय बीत सकैए, लेकिन अपना सबके आप समय ओहि नहीं किया तो आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय संपन्न भ रहल है। तो आब आजुक एहि अंक सँ मणिकांत के
1: और साथ ही आज के अंक में कुशल को
0: दिया अनुमति। नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य

0: दृश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: 90 का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज।

0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया

0: ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से

0: प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस 100 वीक लॉन्ग नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, सेज विकसित भारत रिक्वायर्स फिजिकली हेल्दी, मेंटली रोबस्ट and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. Khyber Pakhtunkhwa and Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए

0: आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है.
1: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports, and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
0: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स

0: ऐसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: मुनश्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की समत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
0: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने 3 रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के आदाद शुमार के कौमी दफातर NSO के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजूद इस्तेहकाम, इख्तिराक, तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद शुमार तब्दीली का महर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद शुमार के आला मेयार, इख्तिरा, मालूमात की मौसर तरसील और अवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा और इस्लाहात को फ़रोग देना, आदाद शुमार की इशात और आदाद शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज़ माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद शुमार को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा, नीज़ मालूमात और बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मज़ीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ 2 निसफ रोज़ा ज़िमनी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें इंतज़ामी आदाद शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पज़ीर डेटा इको निज़ाम में मसनूई ज़हानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूदात पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उड़ीसा का 3 रोज़ा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में आज से पहर भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नजदीक बनारा में जगतगुरु किरीपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफर करेंगी और बाद में गंजम जिले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहां वो मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफर के रास्ते, तप्तापानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकाम को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे ताकि भारत के

चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगी। आदाद और शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराए सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुतहद अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम व इंसराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समंदरी गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीक़ेकार से मुतालिक मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम अज कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पुरअमन रैली सवात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार, जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। जीपी गंगापत को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। मतों की गिनती का कार्य सुबह 8 बजे शुरू हो गया। आज भाजपा, राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों समेत 25 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: पटना की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव की मतगणना का कार्य एएन कॉलेज केंद्र पर हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी मौजूद हैं। मतों की गिनती 31 राउंड में पूरी की जाएगी। मतगणना केंद्र और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। साथ ही बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों का परिचालन आज प्रतिबंधित किया गया है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। 30 जुलाई को संपन्न मतदान में 34.31% मतदान हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना के क्या रुझान हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन के पास। जी आशीष, बताएं, इस समय मतगणना शुरू हुए करीब घंटा भर होने को है, क्या रुझान मिल रहे हैं?
2: जी, मतगणना शुरू हो गया है और फिलहाल डाक मतपत्रों की गिनती जो है वह की जा रही है। शुरुआती रुझान हालांकि थोड़ी देर में आने लगेंगे और हर राउंड के साथ स्थिति जो है वो अपडेट होती रहेगी।
0: जी क्या लगता है आपको, कितने बजे तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है आशीष?
2: जी, यदि मतगणना इसी गति से चलती रही तो दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है और सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे।
0: आशीष, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम दिख रहे हैं आपको?
2: सुरक्षा की बात करें तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।
0: बहुत धन्यवाद आपका आशीष रंजन, अपडेट का इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए समग्र विकास कार्यों में तेजी लाने और पटना के कुर्जी से कालीघाट तक 6.5 किलोमीटर गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में जेपी गंगा पथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार गंगा किनारे फुट ओवर ब्रिज निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक 1.5 से 2 किलोमीटर की

झोपड़ी पर पार्किंग विकसित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समीक्षा बैठक में बक्सर से भागलपुर तक गंगा तट के समेकित और चरणबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उद्योग विभाग की ओर से इन जिलों में पार्क निर्माण के लिए 1050 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ और दरभंगा में 350 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार विकास कार्य के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की बीमारी का रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश भर में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 7 करोड़ लोगों की बीमारी का रिकॉर्ड सरकारी अस्पतालों में तैयार किया गया है। 3 वर्ष पहले शुरू हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत यह रिकॉर्ड लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर शंकर रजक ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में 6,57,00,000 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आज से मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि विधानमंडल के मानसून सत्र और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम 18 जुलाई से 2 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब यह जन सुनवाई कार्यक्रम पूर्व की तरह ही आयोजित होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है, इसे लेकर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। इस बार सावन महीने में चार सोमवार पड़ेंगे।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: प्रदेश के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिन्हेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट से डाक बम जल लेकर बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांवड़ियों से उत्सव का माहौल बन गया है।
3: भागलपुर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ये कांवड़िए 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बोल बम, ताड़क बम के नारों से पूरा मार्ग भक्तिमय बन गया है। सावन माह के दौरान पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग की ओर

0: से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को आध्यात्मिक सांस्कृतिक तथा लोक कलाओं से जोड़ना है, साथ ही बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना है। इधर जिला प्रशासन की ओर से डाकबंगलों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर भी बनाया गया है। इन शिविरों में डाकबंगलों की सुविधा के लिए कई प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
1: इधर सारण संवाददाता ने बताया है कि सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रात 2 बजे पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इधर पहलेजा गंगा घाट पर भी कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िया संगम स्थल से जल उठाकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर और मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना के बैकटपुर धाम और बिहटा स्थित बिटेश्वर स्थान समेत विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और सीवान जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस अवधि में किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी है।
2: दिनांक 3 अगस्त को राज्य के गोपालगंज एवं सिवान जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों, पूर्वी चंपारण, सारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर हमारे बांका संवाददाता ने बताया है कि जिले में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कटिहार जिले के बैरिया पंचायत के सुलकंधा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई। नेपाल के सुनसरी समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न भागों में तनाव के हालात के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा क्षेत्र में सघन वाहन जांच, गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। बिहार पुलिस ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बगहा पुलिस अधीक्षकों को सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रोहतास पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खाली मैगजीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में SSB और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में एक आम के बगीचे से 30 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर मौके से फरार हो गया। सशस्त्र सीमा बल, जयनगर, बिहार STF और बिहार पुलिस SOG की संयुक्त टीम ने विशेष कार्रवाई में 50,000 रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा और 2 मोबाइल फोन के साथ 2 भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष PT उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को सौंपी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नशे के खिलाफ देश में 100 सप्ताह की जंग छिड़ी। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखता है, हर मंत्री, विधायक, जनसेवक सरकार का एक एक पल बिहार के लिए। दैनिक जागरण लिखता है, 20

परसों और तीन चरणों में विकसित होगी पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप। आज अखबार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपना शीर्षक बनाते हुए लिखा है, किसके सिर बंधेगा ताज, फैसला आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। जेपी गंगापत को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने गरजने कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी प्लास्टिक बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: शेरनामा के तहत अभी आप सुन रहे थे चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये कलाम शेरनामा के तहत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू उर्दू अदब और तरक्की पसंद तहरीक पर। उर्दू अदब से मुराद वो तमाम तहरीरें और अखलीकात हैं, माजरत तखलीकात हैं, जो उर्दू जबान में लिखी गई हैं, और ये बुनियादी तौर पर दो हिस्सों यानी नसर और शायरी पर मुश्तमिल होता है। ये इंसानी जज्बात, ख्यालात, मुआशरती इकदार और अक्कासी का बेहतरीन जरिया है। इसमें कहानी और मालूमात को आम बोलचाल या बयानी के अंदाज में पेश किया जाता है, जैसे नॉवेल, अफसाना, दास्तान और सफरनामा। वहीं शायरी में वजन, काफिया और खास आहंग के साथ जज्बात का इजहार किया जाता है, जैसे गजल, नज्म, मरसिया और कसीदा। उर्दू अदब और तरक्की पसंद तहरीक हिंदुस्तान में ऐसे जड़ जमाई कि इसमें इसकी शाखें आज तक मौजूद है। मुंशी प्रेमचंद ने अदब को कुव्वत और हरकत का मजहर करार दिया और इंसान के खारिज और दाखिल में कलीज पैदा करने की बजाय उसमें तवाजुन और हम आहंगी पैदा करने की तलकीन की। प्रेमचंद ने तख्लीक़ हुस्न और रूहानी तस्कीन को बहुत अहमियत दी। तरक्की पसंद तहरीक सज्जाद जहीर का नाम भी आता है। उन्होंने तहरीक को सियासी खतूत पर चलाने की कोशिश की और अदब से ज़्यादा सियासत में मकाम पैदा किया। गर्ज की उर्दू अदब और तरक्की पसंद तहरीक के जरिए मोहब्बत और हुस्न के तस्वुर में भी तब्दीली लाई और एक इंसान को दूसरे इंसान से जज्बाती तौर पर जोड़ने का मजबूत सुतून बना और दुनिया और समाज के लिए बेदारी कायम किया। चेहरों से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का, चेहरों से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का, कोई साहिल पे खड़ा क्या जाने समंदर कितना गहरा है। आइए सुनते हैं महफिल सुकन। इसमें शिरकत करने वाले शायर हैं शहजाद अशरफी, अमानुल्लाह और मोहम्मद सुल्तान मुजफ्फर। निजामत करेंगे मोहम्मद एजाज हुसैन।
1: आज के स्टूडियो मुशायरा में जो शुरा किराम हिस्सा ले रहे हैं उनके इस्माई गिरामी हैं जनाब सुल्तान मुजफ्फर आजाद, जनाब शहजाद अशरफी, जनाब अमानुल्लाह उर्फ मुनीर सैफी। हजरात, आवाम जिस फजा में सांस लेते हैं शायर भी उसी फजा में सांस लेता है और अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई फजाओं से अशआर के लिए मवाद कशीद कर लेता है। इस तमहीद के साथ मैं एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूँ जो बहुत अच्छा शायर होने के साथ साथ बहुत अच्छा मुसव्विर भी है। उसकी पेंटिंग्स आकाशवाणी पटना, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना में आज भी आवेजा हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब सुल्तान मुजफ्फर आज़ाद, ये आरा से तशरीफ लाए हैं।
2: गज़ल के चंद शेर मुलायजा हो। दिले हज़ी को हमारे करार बख्शा है, दिले हज़ी को हमारे करार बख्शा है, तेरा करम है हमें तूने प्यार बख्शा है।
1: हाँ वाह,
2: तेरा करम है हमें तूने प्यार बख्शा है। और शेर मुलाहजा हो कि बहुत हंसी है मेरी जिंदगी का वो लम्हा,
1: बहुत
2: हंसी है मेरी जिंदगी का वो लम्हा कि जिसने हमको तेरा

0: हसी पूछने लगे, कल रास्ते में चंद हसी पूछने लगे, आजाद आप हैं तो गिरफ्तार कौन है। ये थे जनाब सुल्तान मुजफ्फर आजाद, जिनसे आप उनकी गजलें समात फरमा रहे थे। अब मैं एक सीनियर शायर, कई किताबों के मुसन्निफ जनाब शहजाद अशरफी को उन्हीं के एक मतला से आवाज देने जा रहा हूँ। जाऊं कहां मैं दौरे जुनू खैज छोड़कर, अपने गमे हयात की जंजीर तोड़कर। जनाब शहजाद अशरफी।
1: पेश है गजल के चंद अशआर
2: लहजा
1: के। जाऊं कहां मैं दौरे जुनू खैज छोड़कर।
2: अच्छा।
1: जाऊं कहां मैं दौरे जुनू खैज छोड़कर, अपने गमे हयात की जंजीर तोड़कर। अपने गमे हयात की जंजीर तोड़कर, और उनको भी आज वक्त मिटा कर गुजर गया।
2: वाह।
1: उनको भी आज वक्त मिटा कर गुजर गया। अहले वफा नकूश जो गुजरे थे छोड़कर।
2: वाह। अहले वफा नकूश जो
1: अहले वफा नकूश जो छोड़े थे छोड़कर। और शेर अर्ज किया है कि क्यों कर न उसको वक्त का हम गजनवी कहें। क्यों कर न उसको वक्त का हम गजनवी कहें, पिंदार के बुतों को जो गुजरा है तोड़कर।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: पिंदार के बुतों को जो गुजरा है तोड़कर। और आखिरी शेर के, जिन तायरों के दिल में है एहसास हुर्रियत, जिन तायरों के दिल में है एहसास हुर्रियत, जाएं कहां चमन से वो काशाना छोड़कर। जाएं कहां चमन से वो काशाना छोड़कर। और मख्ता अर्ज किया है कि शहजाद आ रहा है जो दौरे जुनू फरोज, शहजाद आ रहा है जो दौरे जुनू फरोज, ले जाएगा वो दिल का लहू अब निचोड़कर।
2: वाह वाह वाह,
1: ले जाए वो दिल का
2: लहू अब निचोड़कर। बहुत खूब।
1: और दूसरी गजल के चंद अशआर पेश हैं, मतलब मुलाहजा फरमाए।
3: इरशाद
2: इरशाद।
1: तबाह कुन है समा, धूप करबला सी है।
2: वाह।
1: तबाह कुन है समा,
2: धूप करबला सी है,
1: फिजा में डूबी हुई ख्वाब गूं उदासी है।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: फिजा में डूबी हुई ख्वाब गूं उदासी है। और शेर देखेंगे कि मुझे न छेड़ो तबीयत जवान होने दो।
2: मुझे न छेड़ो,
1: मुझे न छेड़ो
2: तबीयत जवान
1: होने दो, अभी तो बाह में कुव्वत मेरी जरा सी है। अभी तो बाह में कुव्वत मेरी जरा सी है। और एक एक कतरे शबनम भी चूस डालेगी। एक एक कतरे शबनम भी चूस डालेगी। अभी तो खुए तमन्ना बहुत ही प्यासी है।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: अभी तो खुए तमन्ना बहुत ही प्यासी है। और शेर देखेंगे कि किसे मैं रिंद कहूँ और किसे कहूँ साकी।
2: वाह।
1: किसे मैं रिंद कहूँ और किसे कहूँ साकी, शराब खाने में कुछ ऐसी बदहवासी है।
2: वाह।
1: शराब खाने में कुछ ऐसी बदहवासी है, और नजर झुकी ही रहे तो मजायका क्या है।
3: वाह।
1: नजर झुकी ही रहे तो मजायका क्या है, चमन चमन में अभी नीम बेलेबासी है। चमन चमन में अभी नीम बेलेबासी है। और आखिरी शेर के, चला जो तीरे सितम बस के बेकसा घायल।
2: बहुत खूब।
1: चला जो तीरे सितम बस के बेकसा घायल, यही तो आपकी शहजाद रूशनासी है।
2: वाह वाह।
1: यही तो आपकी शहजाद रूशनासी है। और एक आखिरी गजल, खता बस एक ही हर बार हो ऐसा नहीं होता।
3: खता
1: मतलब है कि खता बस एक ही हर बार हो ऐसा नहीं होता, तबीयत बेसबब बीमार हो ऐसा नहीं होता। हवा की चोट चट्टानों से जाकर पूछ ले कोई।
2: अच्छा।
1: हवा की चोट चट्टानों से जाकर पूछ ले कोई, गुलों पर ही बस उसका वार हो
2: ऐसा नहीं होता।
1: गुलों पर ही बस उसका वार हो ऐसा नहीं होता।
3: अच्छा। वाह।
1: और कभी ऊंची उड़ाने चारों खाना चित भी करती हैं।
3: वाह वाह।
1: कभी ऊंची उड़ाने चारों खाना चित भी करती हैं, फिजाए बुल हवस हमवार हो ऐसा नहीं होता।
2: फिजाए
1: बुल हवस हमवार हो ऐसा नहीं होता। और शेर अर्ज किया है कि कलम की मार का आराई से दुनिया दहलती है। कलम की मार का आराई से दुनिया दहलती है, हमेशा हाथ में तलवार हो
2: ऐसा नहीं होता।
1: हमेशा हाथ में तलवार हो
2: ऐसा नहीं होता।

0: खुरच दी आहनी दीवार से माजी की रानाई।
1: वाह।
0: खुरच दी आहनी दीवार से माजी की रानाई, निशाने आ गई नादार हो,
1: ऐसा नहीं होता।
0: निशाने आ गई नादार हो, ऐसा नहीं होता। और आखिरी शेर के, परिंदे जुगनुओं से भी सवा होते हैं तो बस।
2: वाह।
0: परिंदे जुगनुओं से भी सवा होते तो हैं, लेकिन कोई जुगनू सा रोशनदार हो,
1: ऐसा नहीं होता। कोई जुगनू सा रोशनदार हो,
0: ऐसा नहीं होता।
1: कोई जुगनू सा रोशनदार,
0: परिंदे जुगनुओं से भी सवा होते तो हैं, लेकिन कोई जुगनू सा रोशनदार हो, ऐसा नहीं होता। और मकता पेश किया है कि सफर से आप ए शहजाद थककर सो गए आखिर। सफर से आप ए शहजाद थककर सो गए आखिर, सफर से रास्ता बेजार हो,
1: ऐसा नहीं होता।
2: हवा की चोट पड़ी है,
0: हवा की चोट चट्टानों से जाकर पूछ ले कोई।
2: वाह वाह वाह।
0: गुलों पर ही बस उसका वार हो,
1: ऐसा नहीं होता।
0: नहीं होता। गुलों पर ही बस उसका वार हो,
1: ऐसा नहीं होता। बहुत खूब।
2: हवा की चोट चट्टानों से जाकर पूछ ले कोई, गुलों पर ही बस उसका वार हो, ऐसा नहीं होता। ये थे जनाब शहजाद अशरफी, जिनसे आप उनकी गजलें समाप्त फरमा रहे थे। अब इस स्टूडियो मुशायरे का आखिरी शायर खाकसार अमानुल्लाह उर्फ मुनीर सैफी माइक पर है, गजल समाप्त फरमाएं। बदलियां उड़ रही हैं चारों तरफ, बदलियां उड़ रही हैं चारों तरफ, सर पर लेकर गुबार पानी का, जेरे आब हो गए कई सूबे, जेरे आब हो गए
0: कई सूबे,
2: मुंतजिर है बिहार पानी का। खुश्क धरती को जाने कब से है,
1: खुश्क धरती को,
2: खुश्क धरती को जाने कब से है, ऐ खुदा इंतजार पानी का। चुभ रहा है मेरी समात में,
0: चुभ
2: रहा है
0: मेरी
2: समात में, शोर ये धारदार
1: पानी का।
2: चुभ रहा है मेरी समात में,
1: चुभ रहा
2: शोर ये धारदार
1: पानी का।
2: बस्ती सर पर उठाए फिरता है। देखिए इनके सार पानी का, बस्ती सर पर उठाए फिरता है, देखिए इनके सार पानी का, सर को टकरा रहा है पत्थर से, सर को टकरा रहा है पत्थर से, है कोई गमगुसार
1: पानी का,
2: वजद में है शजर हजर अफलाक।
0: वाह।
2: वजद में हैं
1: शजर हजर अफलाक,
2: बज रहा है सितार
1: पानी का।
2: दूसरी गजल समाज फरमाए।
1: इरशाद।
2: जरा जो शाखे तमन्ना मेरी हरी हुई है,
1: अच्छा
2: जरा जो शाखे तमन्ना
0: मेरी हरी हुई है,
2: चमन को नरगे में लेकर खजां हड़ी हुई है। जरा जो शाखे तमन्ना
1: हरी हुई है,
2: चमन को नरगे में लेकर खजां खड़ी हुई है। कहीं से भी नहीं आती है रस्मो राह की बू।
1: वाह।
2: कहीं से भी नहीं आती है
1: रस्मो राह की बू।
2: अजीब मोड़ पर खलके खुदा खड़ी हुई है। कहीं से भी नहीं आती है रस्मो राह की बू, अजीब मोड़ पर खलके खुदा
1: खड़ी हुई है।
2: मेरे अजीज भी पहचानते नहीं मुझको,
1: अच्छा
2: मेरे अजीज भी पहचानते नहीं मुझको, सफर की गर्द से सूरत मेरी अटी हुई है।
1: वाह वाह।
2: मेरे अजीज भी
0: पहचानते नहीं मुझको,
2: सफर की गर्द से सूरत मेरी अटी हुई है। आखिरी शेर। तमाम शहर में तन्हाई को अमान मिली, तमाम शहर में
0: तन्हाई को अमान मिली,
2: सो मुई फिर मेरी दहलीज पर खड़ी हुई है।
0: बहुत खूब।
2: तमाम शहर में तन्हाई को

0: अमाना मिली सो मुई फिर मेरी दहलीज पर खड़ी हुई है। कहीं भी हादसा हो बोलता नहीं कोई,
1: वाह,
0: कहीं भी हादसा हो बोलता नहीं कोई। मुनीर लगता है सबकी जबां सिली हुई
1: है।
0: मुनीर लगता है सबकी जबां सिली हुई है। कहीं से भी नहीं आती है रस्म व राह की बू, अजीब मोड़ पर खलके खुदा खड़ी हुई है।
1: वाह,
0: गजल का मतला, घर से कोई भी दो कदम निकले, सर हथेली पर लेके हम निकले। एक एक पल की जानिए कीमत, क्या पता कब कहाँ पे दम निकले। ठोकरों में हमारी कल जो थे, आज ठोकर में उनकी हम निकले। तुम जहाँ तक बदल सको बदलो,
1: बदलो
0: करके तारीख हम रकम निकले। एक एक आदमी था संग बकफ, सूरते आई ना जो हम निकले। आखिरी शेर, आज से कर दिया तुझे आजाद। ले तेरी जिंदगी से हम निकले। दी है जब मादरे वतन ने सदा, सबसे पहले मुनीर हम निकले। एक नज्म करबला समाज फरमाए, सुर्ख जो सुबह मसा है आसमाने करबला, खून से लिखी गई है दास्ताने करबला।
1: बहुत खूब, सुभान,
0: जो कटे ना राह हक में दोष पर वो बार है, जिंदगी है आपकी जिंदा दिलाने करबला।
1: बात खूब,
0: जिंदगी है आपकी जिंदा दिलाने करबला। आपके लब चूमने को खुद तरसता था फुरात, आपकी वो तिश्नगी थी तिश्नगाने करबला।
1: बहुत खूब,
0: आपके लब चूमने को खुद तरसता था फुरात, आपकी वो तिश्नगी थी तिश्नगाने करबला।
1: बहुत खूब,
0: आपके सब्रो तहमुल की नहीं कोई नजीर, मुमतहिन जिसका खुदा वो इम्तहाने करबला। आपके सब्रो तहम्मुल की नहीं कोई नजीर, मुमतहिन जिसका खुदा वो इम्तहाने करबला। आखिरी शेर, आपकी कुर्बानियां जिंदा रगे इस्लाम में, ऐ हुसैन इब्ने अली फतह निशाने करबला। आपकी कुर्बानियां जिंदा रगे इस्लाम में, ऐ हुसैन इब्ने अली फतह निशाने करबला। मक्ता, ये मशीयत ही खुदा की थी वगरना आए मुनीर, कोई रखना ही न होता दरमियाने करबला। सुर्ख जो सुबह मसा है आसमाने करबला, खून से लिखी गई है

हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का ये कलाम।

जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला कलाम, दावी दफीर कबीर का। आवाजें हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की।

ढाबित कबीर का ये कलाम अभी आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला कलाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र के तहत गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया है। इस दौरान गया में 4 अवैध गोदामों से छापेमारी के दौरान 68,200 ट्रामाडोल टैबलेट, 59,000 अन्य टैबलेट और कोडिन सिरप, 52,000 से अधिक बोतल

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गाना हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अगला गाना सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म है लावारिस।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अगला गाना सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म है तेरे नाम।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए क्षितिज तारे, सैम भट्ट और मिथुन की आवाज में। गीत मिथुन ने लिखे हैं और संगीत भी मिथुन ने ही दिया है। फिल्म है मर्डर 2।

अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अब सुनिए विद्यापति गीत। कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक और कुंज बिहारी मिश्र। इनके स्वर में आप सुनेंगे विद्यापति गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आज सुनवा रहे हैं पंडित जसराज के स्वर में कबीर भजन, राग शुद्ध वरारी में।

अभी आप पंडित यशराज का गाया हुआ कबीरी भजन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी।

0: और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
0: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
1: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा
0: जी। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे पिसन।
0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां

0: तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
2: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
3: जी सर।
1: जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
2: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना,

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगली प्रस्तुति फिल्म संगीत, जहां पर आप आनंद ले सकेंगे अभी से 12:30 तक नए फिल्मी गीतों का। शुरुआत हम श्रोताओं कर रहे हैं बैड बॉय फिल्म के इस गीत के साथ।

कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी बैड बॉय फिल्म के इस गीत के साथ। आशीष कौर की आवाज़ थी शब्बीर अहमद के संगीत निर्देशन में। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी दरभंगा और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

सईद कादरी के लिखे गीत को संगीत दिया था मिथुन ने। आवाजें थी विशाल मिश्रा और नीति मोहन की। फिल्म का नाम था गदर 2। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का। तो श्रोताओं हमारे साथ बने रहिए इस समय 12:30 तक अभी से लेकर, और आनंद उठाइए अपने पसंदीदा गीत को गीत से। और जो अगला गीत हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं उसे हमने एक बार फिर से लिया है गदर 2 फिल्म से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: फिर हम हाजिर होंगे।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर है श्रोताओं फिल्म संगीत में, और लीजिए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह का गाया हुआ, फिल्म गदर 2 से हमने लिया है।

एक्टिंग का भूत। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मनाली चतुर्वेदी को। गीत के बोल काशी कश्यप के थे और संगीत काशी रियाड का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का। लीजिए सुनिए अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म फाइटर से। विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ों में है। गीत के बोल कुमार के हैं और संगीत विशाल शेखर का।

बैड बॉय। इस फिल्म में अभी आप आकृति मेहरा, राज बर्मन और पायल देव को सुन रहे थे। गीत के बोल सबीर अहमद के थे और संगीत हिमेश रेशमिया का। इसी के साथ फिल्म संगीत को अभी हम यहीं विराम देते हैं। पुनः फिल्मी गीतों के साथ हम लौटेंगे दिन में 1:15 पर। अभी आकाशवाणी दरभंगा से समय हो रहा है सखी सहेलियों का कार्यक्रम नारी संसार का।

नमस्कार बहनों, कार्यक्रम नारी संसार के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी श्रावण मास का मौसम चल रहा है और इस श्रावण मास में जहां एक ओर हर तरफ शिव भक्तों की टोली बोलबम के नारे से सभा बांधते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश की फुहारों से हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। साथ ही चिलचिलाती धूप से भी लोग परेशान हो रहे हैं। पर काम तो हर किसी को करना ही है और हर कोई अपने अपने कामों में अग्रसर है, तो हम भी धूप और बारिश को नज़रअंदाज करते हुए आपसे मिलने आ गई हूँ। तो बहनों, देर किस बात की है, चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। बहनों, सावन का महीना भक्ति भाव और सत्संग के लिए होता है। जी हाँ, जो भी भगवान को मानते हैं आप उसकी पूरे मन से आराधना कर सकते हैं और आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में विशेषकर भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा का काफ़ी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत तो बहुत है, जैसे चतुर्थी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, बहुत सारे पर्व त्यौहार होते हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने को खासकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। खासकर सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये भगवान शिव की कृपा पाने या मनोकामना पूर्ति और व्रत की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, फिल्म संगीत में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे भोले शंकर के महत्व पे, माता पार्वती के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आज फर्स्ट सोमवारी है और सोमवारी को लेकर के थोड़ी बहुत हमने चर्चा की है। तो बहनों, चलते हैं अब अगली चर्चा की ओर। बहनों, आपको पता है विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। जी हाँ, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे उत्तम और संपूर्ण आहार है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु की पहली प्राकृतिक सुरक्षा है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और अनेक संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। बिना विशेषज्ञ का सलाह है कि जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। साथ ही जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्ठी या ग्लूकोज या डिब्बा बंद दूध नहीं पिलाना चाहिए। बहनों, ध्यान रखिए, 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इसमें संपूर्ण आहार है। इसमें शिशु की सभी पोषण और पानी संबंधी जरूरतें केवल स्तनपान से पूरी होती हैं।

मिला। मेरे कहने का मतलब है कि किसी कारणवश माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकी, वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि माँ के दूध में वो शक्ति मिलती है जो ऊपरी अन्य चीज़ों में नहीं होती है, और माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। आइए सुनते हैं वार्ता।

नमस्कार बहनों, एक छोटी मुलाकात अंक के साथ आज मैं उपस्थित हूँ आपकी रेडियो सहेली विजेता। श्रोताओं, आज इस अंक में हम बात करेंगे बुजुर्गों का सम्मान करने की। श्रोताओं, हर घर में बुजुर्गों का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिन घरों में बुजुर्ग नहीं होते, वो घर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिना छत का मकान, मतलब बुजुर्ग का साया हमारे सर पे बना रहे, ये बेहद जरूरी है। वो हमारे घर की नींव के समान होते हैं। उनके दिशा निर्देश की आवश्यकता हमें पग पग पर पड़ती है। घर के तीज त्योहार हो, शादी ब्याह हो, मुंडन हो, जन्मोत्सव हो, इन सभी अवसरों पर हमें बुजुर्गों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, ये हमें समझ में आता है। ये घने वृक्ष के समान होते हैं जिनकी छाया में हम फलते फूलते हैं। पर बहनों, बुजुर्गों के इतने सारे महत्व को समझते हुए भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें बोझ समझने लगते हैं। कितने ही बच्चे को तो बुजुर्ग माता पिता इतने बोझ लगने लगते हैं कि वो उन्हें दो भागों में बांट देते हैं, मतलब माता किसी और बच्चे के पास और पिता किसी और बच्चे के पास। जरा सोचिए, एक माता पिता अपने बच्चों को हमेशा एक साथ रखकर पालते हैं। वो अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझते। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में वो अपनी खुशी समझते हैं। पर एक माता पिता अपने बच्चों के ऊपर बोझ बन जाते हैं और वो उन्हें आपस में भाइयों के बीच बांट लेते हैं, बिना ये सोचे कि उनके ऐसा करने से उनके बुजुर्ग माता पिता को कितनी ठेस पहुंचेगी, उनके दिल को कितना चोट पहुंचेगा, उन्हें कितना दुख होगा। श्रोताओं, बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा पड़ाव है कि इसमें बुजुर्गों को अपनों के साथ की, अपनों के प्यार की बेहद ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों को खुश रखने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा उनके साथ समय निकालकर उनसे बातें कर लें, उनके दिन भर का हालचाल ले लें, वो बहुत खुश होंगे। श्रोताओं, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, बच्चों को उनकी निगरानी में रखें। इससे बुजुर्गों को भी बच्चों के साथ मन लगा रहता है और बच्चे बुजुर्ग नाना नानी या दादा दादी के संपर्क में रहकर सुरक्षित रहते हैं। श्रोताओं, बुजुर्गों को बोझ न समझकर उन्हें अपने घर का आधार समझें। उनसे हर विषय पर बात करें, उनके साथ विचार करें और उनके अनुभव के आधार पर फैसले लें। आप खुद ही गौर करेंगी उनका कहना मानकर आप कितना सही कदम उठा रही हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर आप हमेशा सफलता ही प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनके अनुभव में और आपके अनुभव में, उनकी सोच में और आपकी सोच में बहुत फर्क होगा। यदि आप उनके बताए रास्ते पर चलती हैं तो आपको तो सफलता अवश्य मिलेगी और साथ ही बुजुर्गों को भी बहुत खुशी होगी। श्रोताओं, इस तरह यदि उनकी बात मानकर आप उन्हें सम्मानित करती हैं तो आपका परिवार हमेशा तरक्की के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो अपनी बातों के अंत में कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें कभी बोझ ना समझें, क्योंकि कभी न कभी हम भी उस उम्र से गुजरेंगे जहाँ आज हमारे बुजुर्ग हैं। यदि हम खुद उनके स्थान पर रखकर सोचेंगे तो हमें निर्णय लेने में आसानी होगी और बुजुर्गों का सम्मान करना भी हम कभी नहीं भूलेंगे। तो अब अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।

बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ताकार थी विजेता सिन्हा। वार्ता का विषय था बुजुर्गों का करे सम्मान। बहनों, चलते हैं अब अगली चर्चा की ओर। कामकाजी महिलाओं का जीवन दोहरी जिम्मेदारियों, संघर्षों और आत्मनिर्भरता का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें वे घर और बाहर दोनों को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करती है। जी हाँ, ऑफिस के साथ साथ घर की भी साफ सफाई, खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना, वो भी एक साथ करना बहुत कठिन होता है। महिलाएं घर परिवार को चलाते हुए करियर में आगे बढ़ना, साथ ही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ सखी बहनों, घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार जब काम का दबाव ज़्यादा पड़ता है तो घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच खुद को तनाव से मुक्त रखना आसान नहीं होता है। इसमें लगभग हर दो चार होती है। ऐसे में अगर आप भी दिक्कतों से जूझ रही हैं तो कुछ छोटी छोटी टिप्स की मदद से आप ऑफिस और घर के कामों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए घर के काम और जिम्मेदारियों को अपने पार्टनर के साथ बांट ले। इससे क्या होगा, एक तो आप पर काम के बोझ नहीं पड़ेगा, साथ ही आपका काम भी बढ़ जाएगा और एक दूसरे के साथ भी रहने के लिए टाइम भी मिलेंगे। तो बहनों, जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उसे सबसे पहले करें। अगर ऑफिस की ओर से कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो तो सबसे पहले इसे अहमियत दे, यानी कि ऑफिस के काम के दबाव के बीच आप इस दिन समय बचाने के लिए आप चाहें तो खाना बाहर से भी ऑर्डर कर सकती हैं। वहीं अगर घर में आपके बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है आपके, तो इस दिन आप ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर भी घर आ सकती हैं। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर ले, इससे भी आपका समय बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो समय पर नहीं मिलती है, इसलिए अपनी चीज़ों को एक जगह पर रखने की आदत डालें ताकि इन्हें ढूंढने में आपका वक्त जाया ना हो। अगर आप खुद ही खाना बनाती हैं तो इसके लिए आप अपने खाली समय में कुछ चीज़ों को काटकर फ्रिज में रख सकती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी लगभग रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में समय बचाने के लिए इन्हें छीलकर, काटकर और पीसकर फ्रिज में रख सकती हैं। इससे ये फ्रेश भी रहेगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो इन्हें छीलने, काटने और इसमें समय बर्बाद नहीं होगी, इससे भी आप बच सकती हैं। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। तो बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। तो हर दिन कुछ खास में आज हम जानेंगे, बहनों आपने अपने कुकिंग में करी पत्ते को तो इस्तेमाल ज़रूर किए होंगे। करी पत्ता डालने से खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर करी और पोहे में। बहनों, साउथ इंडियन डिशेस में करी पत्ते का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। आजकल लोग अपने बालों को काला करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी खाली पेट करी पत्ते को खाया है या चबाया है, तो शायद आपका जवाब ना होगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि खाली पेट करी पत्ते का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि खाली पेट करी पत्ता खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम इसकी फ़ायदे की बात करें तो 100 ग्राम करी पत्तों में आपको प्रोटीन 6 ग्राम, फैट 18 ग्राम, आयरन 93 मिलीग्राम, विटामिन सी की मात्रा 4 मिलीग्राम, कैल्शियम 830 मिलीग्राम की मात्रा मिल जाती है। किसी को डायबिटीज कंट्रोल करना हो या स्किन में नेचुरल ग्लो लाना हो या फिर बालों को काला करना हो तो करी पत्ते को इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बहनों, ध्यान रखें, खाली पेट करी पत्ता आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहनों, करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए तनाव को कम करने में और बीमारियों में पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में ये आपकी मदद कर सकती है। आँखों के लिए फ़ायदेमंद है करी पत्ते। विटामिन ए होता है इसमें, जो आँखों को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो बहनों, अब हमारा समय सीमा यहीं समाप्त हो रही है, तो इसी के साथ दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

ये था सखी सहेलियों का कार्यक्रम नारी संसार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को है अब।

0: हिंदी में समाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोपबंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

कार्यक्रम विवरण। इसके तहत श्रोताओं, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर अब से थोड़ी ही देर बाद में आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 1:15 से सुनिएगा फिल्म संगीत। दिन के 2 प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर सुनेंगे इलाकाई खबरें। रोजगार समाचार, माफ कीजिए सूचना, आप सुन सकेंगे दिन के 2:10 पर और दोपहर समाचार प्रतिदिन सुना करते हैं दिन के 2:15 पर।

दिन के 2:30 बजे फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं, और अपराह्न 3 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ लोक गीत। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे कार्यक्रम युवावाणी के साथ। शाम 6:25 पर मैथिली संवाद। शाम 6:30 बजे श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे गाम घर, और 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। शाम 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गाम घर। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का समय है रात 8:15 पर, और रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या।

न्यूज एट 9 रात 9 बजे। उर्दू में खबरें सुन सकते हैं रात 9:15 पर। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक और रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम आप तक पहुंचाएंगे हिंदी फिल्मों के सदाबहार गाने कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। तो श्रोताओं, ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूपरेख।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत A.R. रहमान और साथियों की आवाजों में लिया गया था फिल्म स्वदेश से। अब पेश है फिल्म संगीत। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15:34 हो चुके हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दिन के 2 बजे तक और सुनते रहिए फिल्म संगीत। तो लीजिए सुनिए अमित त्रिवेदी का गाया हुआ, फिल्म का नाम है केदारनाथ, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
1: आई मिलन की रात। आइए सुनते हैं इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलिंद का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं इस समय फिल्म संगीत का। श्रोताओं, अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म निगाहें से। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म शर्मिली से। गीत के बोल नीरज के थे और संगीत SD बर्मन का था। एक बार फिर से हम इसी आवाज़ को दोहरा रहे हैं। सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम है परख।

राहुल देव के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था योगेश ने, आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था मंजिल। जी हाँ श्रोताओं, इस समय आनंद ले रहे हैं आप फिल्म संगीत का आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। लीजिए सुनिए अगला गीत आशा भोसले और विनोद राठौर का गाया हुआ, फिल्म चांदनी में।

आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ों में इस गीत को हमने लिया था फिल्म चांदनी से। आकाशवाणी दरभंगा से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: セソール。अरे बाबा शोर नहीं, सोर सोर सोर।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर

0: लगातार आगे चल रहे हैं। 15वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार पर 8202 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 29752 मत मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 21550 मत मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 6755 मतों के साथ तीसरे स्थान पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। कुल 31 राउंड की मतगणना होनी है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब फिर से प्रारंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के करीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, रोहतास के कुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के वैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने आज कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर डेमू ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल प्रशासन आग लगने के कारणों की जाँच कर रहा है। अररिया जिले की सिमराह थाना पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के एक जवान सहित 2 लोगों को 225 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एसएसबी के स्टिकर लगी कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। शेखपुरा की उत्पाद अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में कबाई के लिए बार बार अनुपस्थित रहने पर बरबीघा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार सहित अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2017 का है। इसके साथ

0: आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। पटना की बांकीपुर असेंबली सीट पर जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार सबकत बनाए हुए हैं। 15वें राउंड की वोट शुमारी के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार पर 8202 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 29752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 21550 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी 6755 वोटों के साथ तीसरे मकाम पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही सबकत बनाए हुए हैं। कुल 31 राउंड की वोट शुमारी होनी है। गौरतलब है कि बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफा के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज मुख्तलिफ मौजूदात पर अपोजिशन के हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इसमें नीट इम्तहान के इशू पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे पहली मुलतवी के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कृष्ण प्रसाद टी ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दरमियान कामकाज शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान नीट इम्तहान के सवाल पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर ऐवान के बीच आ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अराकीन से अपनी सीट पर वापस जाने की अपील की। इसके बावजूद तातुल जारी रहने के सबब लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को भी इन्हीं मौजू पर हिज्ब इख्तलाफ के शोरगुल की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी रखा गया। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे नामा निगार ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत मुख्तलिफ मनादिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। रियासत में मॉनसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत रियासत के ज़्यादातर अजला में आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास ज़िले में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने आज कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल ज़िले में भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर डेमो ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। वाकये के बाद मुसाफिरों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल इंतजामिया आग लगने की वजूहात की जांच कर रहा है। अररिया जिले के सिमराहा थाना पुलिस ने भारत नेपाल सरहद पर तैनात SSB के एक जवान समेत 2 लोगों को 225 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक SSB के स्टिकर लगी कार से शराब की स्मगलिंग की जा रही थी। शेखपुरा की एक्साइज अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में गवाही के लिए बार बार गैर हाजिर रहने पर बरबीघा के थाना इंचार्ज नवीन कुमार समेत दीगर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 2017 का है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए अब रोजगार सूचना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुल पदों की संख्या है 395, आवेदन 21/7/2026 से ही तिथि शुरू है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/8/2026 है। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा इसके लिए है 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके unionbankofindia.bank.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। पंजाब नेशनल बैंक, कुल पदों की संख्या है 545, आवेदन 20/7/2026 से ही शुरू है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9/8/2026, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। विशेष जानकारी pnb.bank.in पर जाकर जानकारी अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं।

एक और सूचना हम आप तक दे रहे हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कुल पदों की संख्या है 200, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से ही है, अंतिम तिथि है 19/8/2026, न्यूनतम उम्र सीमा अभ्यर्थियों के लिए है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा है 24 वर्ष। अभ्यर्थी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए www.igcar.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी कुल पदों की संख्या 163 है, आवेदन 22/7 से ही आरंभ है, अंतिम तिथि है 10/8/2026, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह

0: 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3rd स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ 3rd स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर

स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है।

0: की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो

0: कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में और अभी से हमारे साथ बने रहिए अपराह्न के 3 बजे तक और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। जिन फिल्में थी बेताब, सलामी, दिल का क्या कसूर, अनारी और कसूर। आवाजें लता मंगेशकर, शबीर कुमार, कुमार सानू, अलका याग्निक, आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम लोक गीतों का कुछ ही पलों में।

इस लोकगीत के कार्यक्रम में लीजिए पहले विभा सिन्हा का गाया, हम आप तक सुनवाते हैं ये कजरी।

इस महेशवाणी के साथ ही लोक गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है, दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हो गया और ललकार कर बोला,
1: रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी

0: लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
1: मजदूर बुड्ढे की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुड्ढे की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है?

0: इस बुड्ढे की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
1: जी,
0: ये क्या बात है?
1: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
0: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर हूंगा तो इसे कटने न दूंगा।
0: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
2: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
0: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
0: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
0: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी ला कर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
0: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
0: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाए तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है।

0: इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
1: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
2: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
3: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
4: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी हाँ। किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
3: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है, वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
4: बिल्कुल।
3: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर लिखी है, जो हमारा अगला विषय
4: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
3: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
4: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत है।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव

0: है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या हाँ। इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाएं जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
1: और दीपा विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छुमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
0: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
0: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है,
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सकी सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहां बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी,
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब

0: कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
1: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
0: जी।
1: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
0: बिल्कुल। और ये देखिए ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं नई टेक्नोलॉजी है उसे सीखते चले जा रहे हैं।
1: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है बनाई है वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
0: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है जिसमें वो भी डालते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
1: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी जरूरत के अनुसार आप इन चीजों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीजें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूंगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है। थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
0: उसका जो मसाला है जी
1: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं
1: भाई? हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहत नामा।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।

0: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी,
0: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
1: जी जी।
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात,
0: शुक्रिया एक बार और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
1: जी,
0: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
1: जी,
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी,
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
1: जी।
0: अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
1: जी,
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी, जी।
0: जब तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
1: जी, जी।
0: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
1: जी।
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनिटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
1: जी।
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके,
1: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
0: जांच में पता
1: हो रहा है।
0: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
1: इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक,
1: अच्छा,
0: जो आया हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है, मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
1: जी,
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा
1: जी।
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई, मोतिया बढ़ गया है
1: जी।
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी,
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम

0: सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी,
0: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है, किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो व्हाट मोर कैन यू से, कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, इतना अच्छा हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था।
1: अच्छा।
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम दिखाई दे रहा है।
1: जी,
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कोई मल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको तोड़ के,
1: तो
0: निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी जी,
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है।
1: जी,
0: क्योंकि क्या होता है, वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल,
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया।
1: जी बिल्कुल,
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया।
1: जी,
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहां गिरेगा, आंख में जगह कहां है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा।
1: जी,
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने

0: करती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा
1: जी?
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी
1: जी। जी,
0: तो सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान
0: जी।
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी, बहुत जरूरी है
1: जी,
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं
1: जी। जी,
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा
1: जी?
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है
1: जी।
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तुरंत आके वो लेके जाते हैं और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है
1: जी। वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है।
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं।
0: नहीं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता
1: जी,
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है
1: जी।
0: उनके लिए
1: बहुत लोगों की मदद हो सकती है,
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की
1: जी। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?

0: इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना।
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
0: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के।
1: जी
0: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, 50 रुपए का आता है।
1: बिल्कुल,
0: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप 50 रुपए, आप जाके कहीं पे भी 50 रुपए उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: ग्लास नहीं कर सकते।
0: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
1: हाँ ऑफकोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आईज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोटेक्टिव ग्लासेस सेफ्टी। अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
1: ये छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के, खास तौर
0: आंखों के वो रखना बहुत। अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी,
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में? जो
0: नहीं, फैशन है उसके आगे गया है, टोपी खरीद लो ऐसी उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं? ना ना ना, नो नो नो, नहीं वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले। ये जो रोड साइड वाले हैं इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो फैशन के लिए है।
1: जी जी,
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में, पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करनी चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है। आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी,
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है,
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा।
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
0: जी,
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने आप कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है
0: जो
1: अपनी आंख को साफ कर रहा है।
0: जी,
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी,
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा।
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा
0: और वो तेज तेज
1: तेज मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
0: तो ये किसी भी परिस्थिति में, आंखों के ऊपर
1: भी परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है।
0: जी जी जी,
1: आपको
0: जी,
1: पानी मारने में, आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी,
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी,
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है, जमा हुई।
0: दिन में नहीं निकलती,
1: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे, आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए।
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं नहीं आंख लाल होगी, ये वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
0: जी जी,
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
0: लड़कों को भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए।
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस,
1: वहां पे लगा दी। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
0: जी
1: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
0: जी,
1: सोचिए आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं।
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक,
1: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
0: जी
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजुरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता।
0: जी,
1: वेरी सिंपल।
0: जी।

0: लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं।
0: जी जी, और ये हमें कहा गया है कि ये खतर योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
1: जी,
0: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
1: हाँ,
0: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
0: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
1: जी।
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
1: सही है।
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी,
0: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजुरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं हम, बर्फ लगाते हैं ना
1: जी,
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
1: तो
0: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
1: जी।
0: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
1: जी, जी
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
1: जी।
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
0: सेम पानी। आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था
0: जी,
1: इसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25 दिन तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और

0: का जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी।
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में
1: जी।
0: अच्छा, पेशाब से निकल जाए अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
1: जी जी।
0: ठीक है, इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है
1: जी जी।
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी।
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलर एरिया वो इंट्रा सेलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।

0: जी सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही

0: होता है, अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आंखों को बहुत ही बचाया गया है, देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
1: जी,
0: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता, तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे, सभी में
1: दिखेंगे।
0: है।
1: जी,
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी,
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली,
1: जी,
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए युवा वाणी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सोमवार है और सावन का महीना, समस्त वातावरण शिवमय है और ऐसे में आप युवा कहां पीछे रहने वाले हैं। आप भी बढ़ चढ़कर भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। दोस्तों आज के युवा और भगवान शिव के बीच का संबंध बहुत गहरा है। आज की युवा पीढ़ी भगवान शिव को आदि योगी और आधुनिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखती है। बेशक शिव एक गृहस्थ भी हैं और अघोरी वैरागी भी, वे शांत ध्यान में भी लीन रहते हैं और तांडव भी करते हैं, तो ये संतुलन आप युवाओं को काफी आकर्षित करता है।

दोस्तों आदि योगी के रूप में शिव फिटनेस, ध्यान और मानसिक शांति के प्रतीक माने जाते हैं, जिससे आप युवा जुड़ते हैं। बेशक स्वस्थ रहने के लिए मानसिक और शारीरिक जो हमारा संतुलन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से हम काफ़ी व्यस्त होते हैं और शारीरिक रूप से जब शिथिल हो जाते हैं तो भला ये मानसिक जो व्यवस्था है कब तक आप उस पर चल सकते हैं। आवश्यकता है इन दोनों में संतुलन बनाए रखने की। आप शरीर से भी मजबूत बने, स्वस्थ रहें, तभी मानसिक रूप से आप पूरा अंजाम दे पाएंगे। बातें और भी करेंगे, पहले आपको सुनवाते हैं ये भजन।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जो प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। जिस प्रकार मनुष्य जाति वनों को समाप्त करती जा रही है, वहां शिव जी हमें संदेश मिलता है कि पर्वत और वन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, ये सावन का महीना है, बरसात का मौसम है। आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे आसपास लगा सकते हैं, दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं। यदि पेड़ है तो हम हैं। स्वच्छ वायु, ताजी हवा आप इन पेड़ पौधों से ही हासिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन के अलावा खुली हवाओं में जो आप सांस लेते हैं, और भी कई जरूरत की जो चीजें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये बेहतर मौका है इसे संतुलित बनाए रखने के लिए। अगर कहीं वनों की कमी है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ये सावन का महीना है, बारिश का मौसम है, आप पेड़ लगा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं और वातावरण को अपने अनुकूल कर सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

उसे भगवान शिव की शरण प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अभी जीवन का सफर काफी लंबा है, ऐसे में अपनी शक्ति को बचाए रखना है, शक्ति का सदुपयोग करना है। आप अधिक पढ़ लें, लिख लें, कामयाबी हासिल कर लें, फिर भी आपको गंभीर रहना है, क्योंकि आप समाज कल्याण के लिए आए हैं। घर परिवार देश के विकास को आगे बढ़ाने आए हैं, ऐसे में हमारा आपका संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं कुछ कजरी।

ये वह दोस्तों भगवान शिव को बाघंबर भी कहा जाता है, क्योंकि वे मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बाघ की छाल को व्यक्ति के अहंकार से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में शिवजी द्वारा धारण करना इस बात का भी संकेत है कि जिस व्यक्ति ने भी अहंकार का त्याग कर दिया है

ये था युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत सुनिए कुछ नए गाने।

मैं तेरा हीरो। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत नीति मोहन और जावेद अली की आवाजों में। गीतकार थे दानिश साबड़ी, संगीतकार साजिद वाजिद। वजह तुम हो, आई सुनते हैं इस फिल्म का गीत नेहा कक्कर की आवाज में। इसे लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है गौरव रोशनी ने।

अभी आप सुन रही थी वार फिल्म का गीत विशाल ददलानी की आवाज में। गीतकार थे कुमार, संगीतकार विशाल शिखर। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं व्हाइट चीट इंडिया फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते ही आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की

0: कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गामा घर सुनेंगे शाम 6:30 पर। आज इसके तहत शामिल है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00। रात 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुनिएगा रात 8:15 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। फरमाशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10:00। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब आपको आज समाचारों के लिए समय बताते चलें। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रात 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9:00 अंग्रेजी में News@9। उर्दू खबरें आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा पब्लिक स्पीक और रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव है 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:10 हुआ जाते हैं। लीजिए प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रामकुमार मल्लिक के सुर में विद्यापति की ये रचना।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: यह कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति कुंज बिहारी मिश्री के स्वर में।

विद्यापद गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुंज बिहारी मिश्र और राम कुमार मल्लिक को। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे मैथिली संवाद, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। पटनाक बांकीपुर विधानसभा सीट पर भेल उपचुनाव मे जनसुराज पार्टीक प्रशांत किशोर जीत लेलनि अछि। ओ भाजपाक नीरज कुमार के 18,953 वोट सँ हरौलनि। प्रशांत किशोर के 63,203 जखनकि भाजपाक नीरज कुमार के 44,250 वोट भेटल अछि। राष्ट्रीय जनता दलक रेखा कुमारी 14,085 मतक संग तेसर स्थान पर रहली। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सभक संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कऽ देलक अछि। एहि विधेयक सँ सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक संख्या 3300 बढ़ाकऽ 37 करब अछि। एहि मे देशक मुख्य न्यायाधीश नहि छथि। केंद्रीय विधि आ न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश कयलनि। ओ जनौलनि जे ई विधेयक न्यायिक क्षेत्र मे चलि रहल सुधार काज मे एकटा पैघ डेग अछि। एहि वर्ष मई मास मे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश सभक संख्या 33 सँ बढ़ाकऽ 37 करबाक लेल एकटा अध्यादेश जारी कयने छलीह। स्कॉटलैंडक ग्लासगो मे सम्पन्न 23वां राष्ट्रमंडल खेल मे भारतक बढ़िया प्रदर्शन करैत पदक तालिका मे 4वां स्थान प्राप्त कयलक अछि। भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत आ 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीतलक अछि। बिहारक दू पैरा एथलीट झंडू कुमार भारोत्तोलन में कांस्य पदक और सुमोन राणा शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतलनि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदनक दिशा खिलाड़ी सबके बधाई आ शुभकामना देलनि अछि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू कयल गेल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के सफल बनाबे में बिहारक भागीदारी लेल जनौलनि अछि। आइ औरंगाबाद में आकाशवाणी सँ गपशप में ओ जनप्रतिनिधि सब सँ अपन अपन क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, परिचर्चा आ संगोष्ठी आयोजित करबाक लेल जनौलनि। डॉक्टर कुमार एहि अभियान के जन आंदोलनक रूप देबय लेल जनौलनि। आई सावनक पहिल सोमवारी अछि। भगवान शिवक जलाभिषेक लेल मंदिर आ शिवालय सबमे भोरे सँ भक्त लोकनिक भारी भीड़ लागल अछि। चहू दिस ओम नमः शिवायक मंत्रोच्चार गुंजयमान अछि। हमर संवाददाता सब जनौलनि अछि जे सुल्तानगंजक अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुरक गरीबनाथ, सोनपुरक हरिहरनाथ, रोहतासक गुप्ताधाम, पटनाक बैकटपुर धाम, मधेपुराक सिंहेश्वर स्थान, दरभंगाक कुशेश्वर स्थान, मधुबनीक कपिलेश्वर स्थान, सुपौलक तिलहेश्वर स्थान आ सहरसाक मटेश्वर मंदिर सहित कतेको मंदिर सब मे पैघ संख्या में श्रद्धालु सब भगवान शिवक पूजा अर्चना कऽ हुनक जलाभिषेक कऽ रहल छथि। भागलपुरक सुल्तानगंज में पैघ संख्या में कांवरिया सब उत्तरवाहिनी गंगा के जल बोझबाक लेल पहुँच रहल छथि। ई कांवरिया सब 105 किलोमीटर से बेसी की दूरी

0: कय कऽ झारखंडक देवघरक बाबा बैद्यनाथक जलाभिषेक करता। आइ मौना पंचमी पावनि मनाओल जा रहल अछि। मिथिलाक नव विवाहिता लोकनिक प्रसिद्ध पावनि मधुश्रावणी आइ सँ शुरू भऽ रहल अछि। 15 दिन धरि चलयवला ई पावनिमे नव विवाहिता सब नित्य संध्या काल सजि धजि कऽ फूल जमा करै छथि आओर अपन सखी बहिनपा सभक संग गीत गबैत घर धरि अबै छथि। अगिला दिन भोर ओहि 22 फूल सँ नाग नागिन गौरी शंकर देवी देवता सभक पूजा विधि विधान सँ करैत छथि। सुहागक रक्षा लेल ई पावनिके नव विवाहिता सब बड़ निष्ठा आ विधि विधान सँ करै छथि। प्रदेश में मानसूनक सक्रियता सँ वर्षा भऽ रहल अछि। पटना सहित राज्यक बेसी भाग में आइ भोर झमाझम वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक बीच सारण जिला में सबसँ बेसी 98 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग काल्हि भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिला में भारी बारिश के लऽ कऽ चेतावनी जारी कयलक अछि। अररिया जिलाक सिमराहा थाना पुलिस भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबीक एक जवान सहित 2 लोक के 225 लीटर शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि। पुलिसक अनुसार एसएसबीक स्टिकर लागल कार सँ शराबक तस्करी कयल जा रहल छल। दरभंगा जिलाक मणिगाजी थाना क्षेत्रक मकरंदा गाम लग उत्पाद विभागक टीम एकटा पिकअप वैन सँ 33 लाख टकाक शराब बरामद कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए गांव घर कार्यक्रम।

0: नमस्कार ओगना भाई।
1: नमस्कार अनिल भाई। अनिल भाई, आज सोम दिन है, आज दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लबै छियन हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा से।
0: तो आई एहि कार्यक्रम में खास कर ई कार्यक्रम वृद्ध लोकन के संबोधित कार्यक्रम है, तें हुनके सभक संबंध में विशेष रूप से गप करब। बुजुर्ग हमर सभक धरोहर छथि, संगे ओ हमरा सब गोटे के अपन गहीर अनुभव, पवित्र संस्कार आ स्नेह से सही रास्ता देखबै छै। बुजुर्ग कोनो समाज के सुखी आ मजबूत परिवारक आधार होइ छै।
1: ठीके कहलौं अनिल भाई। बुजुर्ग लोकनि जे छथि हुनके माध्यमे समाज में पावन तिहार, मूड़न उपनयन के विधि व्यवहार ई सब सब किछु संरक्षित अछि आ धरोहर के रूप में जे परंपरा सब एखनो अपना लोकनिक समाज में अछि ओ सब हमरा लोकनि मानैत आबि रहल छी। हुनकहि सँ दिशा निर्देश लऽ कऽ ओ जे कहैत छथि जे ई नीक हैत, बेजाय हैत, उचित हैत, अनुचित हैत, एहि पर ध्यान दैत छी। तऽ ई हमरा लोकनिक दायित्व भऽ जाइत अछि जे अपनासँ पैघ बुजुर्ग के गप के बुझियनि, कारण ओ जे कहैत छथि ओ हुनक अनुभव पर आधारित होइत अछि। जेना आई अपना सभक एहिठाम मिथिला मे मधुश्रावणी पावनि जे होइत अछि तकर आइ पंचमी तिथि अछि, आइ पंचमी मनाओल जाइत अछि, आइसँ ई पावनि के शुरुआत होइत अछि। एहिमे नव विवाहिता

0: लोकनि जे छथि ओ पहिल वर्ष एकरा बड़ धूमधामसँ मनाबैत छथि आ एकर अंत मधुश्रावणी पाबनि सँ होइत अछि।
1: देखियौ ओकरा ओहे बुजुर्ग लोकनि मात्र वयस वा उम्रसँ नम्हर नहि होइ छै, ई कहल जा सकैत अछि जे जीवनके हरेक उतार चढ़ावके अनुभवके खजाना बनि गेल छथि। जेना गप करी एकटा मजबूत गाछ अपन जड़िसँ जुड़ल रहैत अछि, ठीक ओहिना बुजुर्ग रूपी जड़ि सतत शक्ति प्रदान अपन परिवारमे करैत छथि। जाहि परिवारके पैघ बुजुर्गके सम्मान देल जाइए ओहि परिवारमे सदिखन शांति आ समृद्धि बनल रहैए। तऽ गप करब हमसब मुदा छोट सन विराम।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: उगना भाई, अब हम सब बाह्य ध्वनांकन पर आधारित एकटा भेंट वार्ता सुनी। भेंट वार्ता विषय अछि बुजुर्गों का समाज में महत्व। भेंट वार्ताकार छथि अशोक कुमार झा, हिनका संग गप कर रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तो दोनों गोटे एक बीच जे गप भऽ रहल अछि, ध्यान से सुनी।
0: तो सुनल जाय।
5: आई हम जयंतीपुर दात गाम दरभंगा जिला में छी। एतौ एकटा बुजुर्ग छथि अशोक कुमार झा, हिनकर उम्र की छनि की कऽ रहल छथि आ वर्तमान में जे बुजुर्ग लोकनि समाजक धरोहर छथि हिनका कोना संरक्षण भेटनि जे ई रहि सकथि, ताहि प्रसंगमे हिनका सँ चर्चा कऽ रहल छी। तऽ अशोक झाजी, अपने स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिके ई जनतब दियौन जे अहाँ कोन गामक
6: ग्राम जयंतीपुर दात उबाई टोल भेल। हमर नाम अशोक कुमार झा, भूतपूर्वमे हम सैनिक रही, सिपाही ड्राइवर रही। वर्तमानमे हम रिटायर कऽ कऽ आब गाँवेमे रहै छी आओर छोट मोट एकटा टेम्पू गाड़ी लऽ कऽ अपन समय बिता रहल छी।
5: एकर सङ्गे अपने एखन वर्तमानमे जहन अवकाश प्राप्त कऽ लेलहुँ

0: कखनो काज करबाक जे इच्छा ई बुजुर्ग लोकनिक लेल प्रेरणाक स्रोत छनि। कारण उम्र किछुओ हुए अपन काज करबाक जागरूकता हेबाक चाही, एहिसँ अपने ही लाभ भेटैत अछि।
1: हाँ, एहिसँ हमरा अपने लाभ होइए, एहि दुआरे कि हम घरमे बैसल रहब तऽ आदमी हमरा की कहत, ताहि लए कऽ हम मेहनत करै छी। शरीर स्वास्थ्य बढ़िआँ रहैए, दू पैसो होइए, 10 आदमीसँ भेंटो घाट होइए, सभसँ नीक जकाँ गप सप होइए, सभ बुजुर्ग सभसँ बड़ा आनंद भेटैए, बुढ़ापा बहुत आनंदसँ कटि रहल यऽ मेहनतके बल।
0: किछु आमदनी सेहो भऽ जाइत अछि अतिरिक्त। एकर सङ्गहि एखनुक जे परिस्थिति अछि, ओहि परिस्थितिमे प्रायः देखल जा रहल अछि जे बुजुर्ग लोकनिके वर्तमान समयमे जे पहिने हिनका लोकनिके मान सम्मान भेटैत छलनि ओहिमे किछु घटि रहल अछि। एहिमे बहुतो कारण अछि, ताहिमे सँ अपनेके किछु एक दूटा कारण प्रसङ्गमे कहियौ।
1: कारण ई छै सर, जे आब धियापुता पहिले जकाँ नहि होइ छै आदमीके। पहिले 5 गो 7 गो रहै छलै तऽ 2 गो 1 गो घरपर एनी टाइम रहै छलै। आब 1 गो बच्चा होइ छै सर, ओकरा आदमी बढ़िआँसँ परवरिश कऽ दै छै, बच्चा अपन आगू निकलि जाइ छै, तऽ माय बापके कनि बुढ़ापामे कनि पहिलेके मात्रामे अखन कष्ट कनि विशेष होइ छै। ओकरा लगमे पुत्र नहि रहै छै, पुत्री नहि रहै छै, सन्तानके मात्रा कमीके वजहसँ ई समस्या यऽ। मानि लिअ यदि हमरा 5 गो 6 गो धियापुता रहितै तऽ एकटा ने एकटा घरपर रहबे करितै। आब 1 गो यऽ तऽ ओकरा बढ़िआँसँ यदि नहि तैयार करबै तऽ हमर आओर बुढ़ापा खराब भऽ जायत।
0: ई तऽ सेहो नीक अछि जे आब पहिलका बेर नहि रहलै, तैं बेरक अनुसार बुजुर्गो लोकनिके चलबाक चाही।
1: हाँ, चेंज केलियै अपने आपके सर, मजबूती अनलियै हँ जे कमसँ कम जा तक चलैए हाथ पैर ता तक ककरो सहारा।
0: एहिसँ जे धियापुता लोकनि छथि, संतान छथि, ओहो प्रेरणा लेता जे एक।
1: हाँ, हमरो पिताश्री 80 साल तक काज केलखिन, हुनके प्रेरणासँ हमहूँ काजमे लागल छी। रिटायर भेलाके बावजूद हम आरामसँ बैस सकै छी, नून रोटी खा सकै छी, लेकिन हम नहि बैसै छी, एहि दुआरे कि हमर बाबूजी 80-82 साल तक खेतमे काज करैत रहथि। सरकारी नौकरीके रिटायर भेलाके बावजूदो 20 वर्ष खेती कयलथि। सएह प्रेरणा हमरा यऽ, ताहि प्रेरणा लए कऽ हम आगू बढ़ि रहल छी हुनके पथपर।
0: ठीके कहलहुँ। आ एहि लेल बुजुर्ग लोकनिके देखबाक लेल कारण ई लोकनि धरोहर होइत छथि परिवारमे, बेर पर हिनके लोकनिक आवश्यकता होइत छनि जे एखनुक युवा लोकनि छथि, संतान लोकनि छथि, हुनका सामाजिक रूपे दिशा निर्देश।
1: सब काजमे हमी सब छी सर, सिर्फ नौकरी चाकरीमे हमर बेटा पुतहु यऽ, बाकी टोटल काज तऽ हमरे सबके करऽ पड़ैए। बुढ़ बाबू यौ आइ ई हेतै, हाँ ठीक छै बुआ, देख लै छियै कते पैसा कने भेज दिहक, एना ओना कऽ कऽ
0: सङ्ग सङ्ग जो बेर अबै छै तऽ वएह लोकनि समयके अभाव नहि रहै छनि, एखन भौतिक युग छै, तऽ कखनो कऽ इहो कहि दै छथिन बुजुर्ग अपन जे छथिन हुनका जे एखनुक जे युग छै अहाँ नहि बुझै छियै।
1: ई कहि कऽ बुड़बक बनबै छथि, लेकिन तैयो हमसब तऽ बुझै तऽ सबटा छी, अंठा दै छियै जे धियापुताके बेसी नॉलेज छै, तऽ चल भाइ तोरे नॉलेजसँ हमसब चलब, सएह ने होइ छै सर।
0: ठीके छै, आ किछु धियापुतासँ बुजुर्ग लोकनिके सिखबाक चाहियनि। कारण ई नहि जे हम बुजुर्ग छी तऽ आब की हमरा एकर आवश्यकता अछि सीखैके। प्रायः एखन ATM चलि रहल अइ, रुपया पाइ लेल Paytm चलि रहल अइ, ऑनलाइन पेमेंट भऽ रहल अइ, इंटरनेटसँ सब काज भऽ रहल अइ, एते धरि जे स्टेशन पर टिकट सेहो ओहीसँ भेट रहल अइ, तऽ सब व्यवस्था जो बदलि रहल अइ तऽ ई तऽ बुजुर्ग लोकनिके युवे लोक बताउ।
1: हाँ हाँ हाँ, एहिमे युवाके बहुत बड़का योगदान यऽ जे माय बापके बढ़िआँसँ समझा बुझा कऽ ओ अपन काज निकालै छथि, अपन पिताश्रीके बुड़बक नहि बना दै छथिन, ई पुत्रके उपरमे निर्भर आबि गेलै।
0: ठीके कहलहुँ, अहाँ कनि समाजक धरोहर छी, अहाँके एखन वर्तमानमे की उम्र अछि?
1: हमर उम्र भऽ गेल, हमर 63 के जन्म यऽ सर, ओहि हिसाबे हमर 61 सालके लगभग उम्र भेल हैत।
0: अशोक झा जी,
1: हाँ
0: अहाँ लोक ठीके सब गप कहलहुँ। जे समाजक जे वर्तमान स्थिति अछि, पहिने की स्थिति छल,
1: दुख सुखमे शरीक हेबे।
0: अशोक झाजी, अहाँ बड़ नीक जकाँ स्नेही श्रोता लोकनिके बुझा बुझा कऽ कहलियनि, एहि लेल अहाँके धन्यवाद।

0: अहूँके बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर जे हमरा ई मौका देलहुँ ई बजैके लेल एहिके लेल।
1: हाँ उगना भाई, एखन हमसब बाह्य ध्वनांकन पर आधारित एकटा भेंट वार्ता सुनि रहल छलहुँ। भेंट वार्ताक विषय छल बुजुर्गों का समाज में महत्व। भेंट वार्ताकार छला अशोक कुमार झा, हिनका संग गप कऽ रहल छला शंकर कुमार चौधरी। तो दुनू गोटेक बीच जे गप भेल ओहिसँ ई गप तऽ एकदम साफ भऽ गेल जे समाज में बुजुर्ग लोकनिक बड्ड बेसी योगदान अछि। ओ घर रहे कि समाज रहे, ओकरा नीक जकाँ चलबक लेल हुनकर योगदान आवश्यक अछि। नीक जानकारी भेटल, दुनू गोटे के धन्यवाद।
2: आ अनिल भाई, सदत ई देखबा में आबि रहल अछि जे हमरा लोकन जे किछु सिखैत छी, जो किछु बुझैत छी, तऽ ओ हुनके माध्यमसँ बुझैत छी। बुजुर्ग एकटा गुरु के समान सेहो होइत छथि जे बेर पर सब किछु बुझबैत छथि, नीक बेजाय के ज्ञान दैत छथि।
1: देखियो, कहि सकै छी जे बुजुर्ग हमर सभक संस्कृति के अभिन्न अंग छै। बुजुर्ग के माध्यम सँ बच्चा के विकास में सहायक होइए, बुजुर्ग अनुभव के पाठशाला होइ छथि, बुजुर्ग परिवार के कुशल मार्गदर्शक होइ छथि।
2: तऽ ठीके कहलहुँ, आ अहिक संग आब हमरा लोकनि सुनै छी ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तो सुनल जा
1: सुनी हमसब।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बिहार और झारखंड के युवा साथियों कैसे हैं? एक बार फिर से आ गया आप सबों का अपना दोस्त राजेश, आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लेकर कार्यक्रम बुनियाद। जी हाँ, सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ, रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ, आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई, तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं। नंबर नोट करें, 1800 121 0051, 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एडुकेशन। हमने कहा

0: हाँ, बीएड स्पेशल एडुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। एक साथी ने जंदाहा वैशाली से हमें लिखा है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद। जी हाँ, अभी अभी इन्होंने इंटरमीडिएट पास आउट किया है बायोलॉजी के साथ और अपने लिए एक अच्छे कोर्स की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तक आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारियां देते, मैं फॉलो नहीं कर पाया, कृपया उसे एक बार फिर से बता दिया जाए। इसके अलावे भागलपुर से, पूर्णिया से, बक्सर से और भी बहुत जगह से फोन कॉल आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन, जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे, जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का यह निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे, स्कूल के जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी, और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है, एक बार जरूर बीएड स्पेशल एडुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एडुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051, 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने 3 नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी

0: रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद, जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो उस तरह के सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे, उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा वैसे लोगों से जिन्होंने +2 किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएं और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं, तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है, जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं, खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है, जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले, आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं, तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहां भी रेफर करते हैं और वहां जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो,

0: से ICSE और CBSE के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अविनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में, और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800121 0051, 1800121 0051, और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है। और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की, और नंबर वही 1800121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: ओगना भाई, एखन हम सब सुन रहल छलौं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। एहि संग आब आजुक जे अनुभव के चश्मा कार्यक्रम छल ओकर समय सम्पन्न भऽ रहल अछि। खेती गृहस्थी में सब किसान भाई लोकनि के, अन्नदाता बंधु लोकनि के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार।
4: हमहू स्वागत करै छियनि स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के, आइ हिनका लोकनिक लेल लऽ कऽ आयल छियनि खेती गृहस्थी में एकटा भेंटवार्ता, एकर संगे गीत नादक आनंद सेहो लेब। मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लैत छी। अनिल भाई, हमरा लोकनि कोनो फसिल जे उपजाबैत छी ओ निर्भर करैत अछि फसिलक बीयाके गुणवत्ता पर, आ ओ बीयाके जहन बाउग करैत छी तऽ गुणवत्ता बनल रहए ताहि लेल ओकरा उपचारित कऽ कऽ बाउग करबाक चाही, जकरा बीजोपचार कहैत छी। बीजोपचार कतेको प्रकारसँ होइत अछि, एकर कतेको लाभ होइत अछि, जाहिपर एखन हमरा लोकनि चर्चा कऽ रहल।
3: सबसँ पहिले मूल गप करी उगना भाई, जे कोनो फसिल लगेबा कालमे वा खेती पथारी वाला काज में जत्ते वस्तु सभक व्यवहार करै छी ने, ओहि में बीया के सर्व प्रमुख स्थान है। अहाँ कहबे के लिए जे सदिखन प्रमाणित बीया, रोग रोधी बीया, उन्नत किस्मक बीया के व्यवहार करी, आ बीया के संक्रमण से बचेबाक लेल, नीक अंकुरण क्षमता के लेल, नीक उपजा के लेल बीजोपचार आवश्यक।
4: यह भेल बीजोपचार के लाभ, जे हमरा लोकन के एहि लेल बीजोपचार पर ध्यान देबाक चाही। सबसँ पहिने जे बीया के रोग प्रतिरोधक क्षमता ओ बढ़ जाइत अछि। बीजोपचार कतेको प्रकार से होइत अछि, जाहि मे सूर्य के तापक विधि से, बाष्प विधि से, एकर लेपन विधि से, जकरा विलेपन क्रिया कहै छी ओहि विधि से, और कतेको अन्यान विधि।
3: रासायनिक उपचार से सेहो होइए, जैविक वा जैव उर्वरक के व्यवहार करै छी। तऽ सबसँ पहिने रासायनिक उपचार के संदर्भ में जँ गप करी तऽ बीजोपचार के एहि विधि में फफूंदनाशक

0: कीट सबसँ बीयाके बचेबाक लेल कार्बेंडाजीम वा थीरमके लेप बीयाके ऊपर चढ़ा दै छी। जैविक वा जैव उपचारमे राइजोबियम कल्चर वा एजोटोबैक्टर जेहन सूक्ष्म जीव सबके जीवाणु कल्चरसँ उपचारित कयल जाइए। ई कल्चर सब खेत के माटि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद भेटैए, संगे ओकर गति के सेहो बढ़बैत अछि। संगे भौतिक आ ताप उपचार विधि जना अहाँ कहलियै, बीज उपचार के एहि विधि में बीया के गर्म पानि में डुबा कऽ वा रौद में सुखा कऽ उपचारित करै छै। बीज उपचार कोना करी? बीज उपचार एकटा सामान्य प्रक्रिया अछि जाहिमे बीयाक ऊपर दवाई के आवरण बना देल जाइत अछि। कहबे के लिए जेकर बहुत रास विधि अछि,
1: एकरा जहन इहो ध्यान राखी बीजोपचार करवाबेर में जे बीया के मात्रा कतेक हुए, ओहिमे रसायन के कते व्यवहार करबाक चाही, ओकर कतेक दिन धरि सुरक्षा रहैत अछि, एहि सब गप पर ध्यान देबाक चाही। तखन नहि कयल गेल बी उपचारित बीया सँ हमरा लोकनि लाभ उठा सकब।
0: तऽ उगना भाई देखियौ, आइ साउन मासक पहिल सोमवारी अछि। बहुत रास गप केलहुँ हमसब, पहिने एकटा सुन्दर सन भोला बाबाके गीत सुनी।
1: तऽ सुनल जाए।

0: भाई एखन हमसब जे गीत सुनैत रही ओ गीतक कलाकार छली कुमकुम झा। देखियो बरसातक समय अछि, बूंदा बूंदी बरखा होइए, रौद तेहन नहि होइए, एहन समयमे माल जालके संक्रमणके बेसी आशंका होइए। तऽ आइ हमसब एहने बिखाइसँ सम्बन्धित एकटा भेंट वार्ता सुनी।
1: बिखाइ अछि पशुओंके संक्रामक रोग एवं उपचार, आ भेंट वार्ताकार छथि चंद्रभूषण मिश्रा, हिनकासँ गपशप कऽ रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तऽ दुनू गोटाके बीच भेल ई गपशप सुनल जाय।
0: किसान भाई लोकनि, आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रममे अपने सब गोटेके स्वागत, संगे सब गोटेके नमस्कार। खेती पथारी वाला काजक संग हमसब पशुपालन वाला काज सेहो अदौ काल से करैत आबि रहल छी। खेती पथारी में जेना समस्या होइए, ठीक ओहिना पशुपालन के क्षेत्र में सेहो बहुत रास समस्या मालजाल के होइए। तो आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
2: नमस्कार अनिल बाबू।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहब जे पशु के बहुत तरह के रोग हुई है, जाहि में संक्रामक रोग सब बड्ड बेसी घातक हुई है, कतेक पशु के जान चल जाइए जानकारी के अभाव में वा सजगता के अभाव में कह सकै छी। तो सबसँ पहिने तो हमरा ई कहू जे संक्रामक रोग सब मालजाल के किया होइए, आ इसब बचबो के लेल सामान्य परहेज की सब करक चाही?
2: पशुपालक भाई अनिल बाबू जना कहला, संक्रामक रोग जे छै ओ जतबे आसानी से पकड़े छै ओतबे ओ खतरनाक ओकर असर होइ छै। आ ई कहियो कहियो एहन परिस्थिति भऽ जायत कि सब व्यवस्था के बाद वहाँ ओकरा कंट्रोल नहि कऽ सकै छी। तैं संक्रामक रोग से बचाव के सबसे आसान, सुलभ और निश्चिंत तरीका छै जे साल में शेड्यूल के मुताबिक पशु के टीकाकरण कराबू। जेना FMD टीकाकरण होइ छै जून में और दिसंबर में, जेना HSBQ के टीकाकरण होइ छै साल में एक बार जून के आसपास। तो ऐसे की हैत, जेना अब अहाँ केना पकड़बै, अगर पशु के मुँह से अचानक लार खसऽ लगलै, ओकरा मुँह जीव में घाव भऽ गेलै, ओकरा खाना में दिक्कत भऽ गेलै, ओकरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा लगलै, बच्चा एहिमे बेसी प्रभावित होइ छै दूध पीला पर माय के, तऽ अहाँ बुझियौ कि ओकरा FMD या खुरपका मुँहपका कहै छै से बीमारी भऽ गेलै। दोसर बीमारी लंगरा, जकरा BQ कहै छै, ब्लैक क्वार्टर, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी छै जे कोनो पशु के भऽ गेला पर ओकर पैर में स्वेलिंग होइ छै, जे स्वेलिंग के अहाँ अगर खूब फूल जाइ छै, ओकरा अगर आंगुर से दबेबै तऽ बालू के पोटरी के जेना दबाबै के आवाज होइ छै तेहन क्रिपिटेटिंग साउंड अहाँके ओहिमे आयत। पशु के बुखार बहुत ज्यादा भऽ जाइ छै, पशु काज केनाइ पाज केनाइ सब बंद कऽ दै छै, तऽ ओकर भी अहाँ ब्लैक क्वार्टर भेलै, तत्काल सबसँ पहिने बालू के पोटरी बनाकऽ तावा पर बालू के गरम कऽ के ओकरा कपड़ा में राखि के ओकरा खूब सेकू और तत्काल पशु

0: चिकित्सक से इस संबंध में संपर्क करू।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जाना चाहब जे बचाव के लिए बरसात से पहिने टीकाकरण तो हेबाक चाहिए, चिकित्सा के लिए सामान्य रूप से अब तो दवाई बीरो के बारे में सामान्य गप आदमी से हो बहुत रास गप बुझा लगल
0: जी जी,
1: जना पेंसिलिन भेले एम्पिसिलिन व सिफालैक्सिन एकरो व्यवहार कैल जा सके।
0: निश्चित रूप से अहाँ के कनिको मवेशी के बुखार बढ़ल तो ओकरा सबसे पहिने एमोक्सिसिलिन पेंसिलिन के भी भेले एमोक्सिसिलिन ओइसे ओकर प्रयोग अहाँ तुरंत कर सकै छी। ओहिमे आइकाल्हि एमोक्सिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग भी आवे लगलै है कि अगर अहाँके बुझाइए कि एक दिन भंग के बाद हमरा फिर सुई देवे में दिक्कत ककरो बजाबे के पड़त तो एक दिन अगर अहाँ पेंसिलिन लॉन्ग एक्टिंग दो एम्पिसिलिन दो देवे तो वो तीन दिन तक काज करत और बहुत सारा बीमारी के ऊपर कंट्रोल भ जाए। जँ बुखार छै तो मेलोक्सिकाम पारासिटामोल फ्लूनीमैक्सिमिन सब दवाई अबै छै तकरा अहाँ दियौ और बहुत ज़्यादा साँस चलऽ लगलै मवेशी गाभिन नहि तो ओकरा डेक्सामेथासोन या आइसोफ्लूपोरिडोन अबै छै। एते दवाई अहाँ प्रारंभिक रूप से भी कोनो अगर कनी मनी जनै छी तऽ अहाँ निश्चित रूप से दऽ सकै छी जैसे बीमारी में बहुत नियंत्रण भऽ जाय।
1: डॉक्टर साहब, डकहा वा गिल्टी रोग सेहो माल जाल के भऽ जाइए, इहो एकटा संक्रामक रोग है, एहि सब बचाव के लेल आ सामान्य उपचार के संबंध में कहल जाय।
0: डकहा के नाम सुनते पशुपालक रुआ कांपि जाय छन। डकहा के सबसे पैघ लक्षण छै कि ओकर सब पशु के तापमान 104 से बेसी 106 107 तक भ जाय छै। पशु बहुत ज्यादा हाँफा लागत, मुँह से लार निकलऽ लागत, कंठ से लऽ कऽ ओकरा दुनू पैर के बीच तक ओहिमे सूजन भ जायत और ओहि के बहुत ज्यादा सीरियस भेला पर मवेशी के मृत्यु भी भ जाय छै सांस नली में गड़बड़ी के कारण। तैं पशु अगर अहाँ के डकहा के गलाघोटू के शिकायत भ रहल है, डकहा के शिकायत भ गेल है तो अहाँ सबसे पहिने एम्पिसिलिन डेक्सामेथासोन एकर और एनाल्जेसिक में मेलोक्सिकाम ग्रुप के सुइया एकटा लगा कऽ तहन तुरंत अस्पताल या योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करू ताकि अहाँ के पशुधन बच सके।
1: देखियो कखनो कखनो एहनो देखल जाय छै डॉक्टर साहब जे माल जाल जे छै कोनो एहन खर पात खा लेलक जे बिखाह होइए तो पशु के आपातकालीन स्थिति में विस्पान कऽ लैए तो ओहिसे बचो के लेल की करक चाही?
0: आइ काल्हि बढ़ैत वैज्ञानिक खेती के एक से एक वैज्ञानिक तरीका बढ़लैए जाहिमे विभिन्न प्रकार के कीटनाशी के प्रयोग होइ छै। भीषण गर्मी पड़ला से भी बहुत सारा चारा जे छै से ओकर सही से ग्रोथ नहि भेला पर ओहिमे पॉइजनिंग डेवलप कऽ जाइ छै। जे तो सबसे पहिने अगर पशु एहन घास खा लेलक जाहिमे कोनो तरह के छिड़काव भेल छै दवाई के तो ओकरा तुरंत उठब बैसऽ लागत, छटपट छटपट करऽ लागत, पेट में दर्द हुअ लागत। तैं अहाँके पास अगर खाय वाला सोडा उपलब्ध है तो खाय वाला सोडा सुसुम पानि में घोरि के ओकरा पिया दियौ। ओहू से जल्दी अगर दही कतौ उपलब्ध है तो दही दऽ दियौ। ओहू से जल्दी विनेगर होइ तऽ ओ दऽ दियौ। पशु के पूरा शरीर के रगड़ी कहाँ खूब धोइयौ। अब आबि जाओ जनेरा खेला से सबसे ज्यादा आइकाल्हि गर्मी के समय में जनेरा खेला से पॉइजनिंग के बहुत ज्यादा संभावना रहै छै। तो जनेर के अगर खा लेला से पशु में ई सब लक्षण आयल, पैर हाथ खूब पटकऽ लागल, मुँह से गौंज आवे लागल, फेन आवे लागल, पशु चित भऽ कऽ लेट गेल, एहि स्थिति में अहाँ सोडियम थायोसल्फेट के घोल, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल और एट्रोपिन सल्फेट पशु के भार के मुताबिक 2 एम्पुल से लऽ कऽ 10-12 एम्पुल तक दऽ सकै छी। संगहि कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट के इंजेक्शन ओकरा आई भी चढ़वा सकै छी। तो जनेरा वाला में अहाँके स्थायी कंट्रोल भऽ जायत और पशु अहाँके बच सकैए।
1: एकर अतिरिक्त किछु आर जानकारी डॉक्टर साहब हम अहाँ से चाहब जे दुधारू पशु अइ ओहि पशु सब में प्रजनन संबंधी समस्या सेहो उत्पन्न भऽ जाइए, जेना एकटा होइ छै रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जकरा जड़ि बाहर निकलब कहै छै, तऽ ओकर कारण की होइ छै? देखभाल में कमी होइ छै कि खान पान में कमी होइ छै? तऽ सामान्य रूप से कहल जाय जे एकरा लेल की करक चाही?
0: देखियौ सबसे बड़का जखन पशु गाभिन रहै छै तऽ ओ अहाँके बैंक छै, बैंक भेलै एटीएम टाइप के, लेकिन एटीएम के पिन अहाँके तखन भेटैए जखन पशु बिया जाइ छै। आ ओहि समय मे अहाँ अगर ओकरा अंतिम 3 मास जे भेलै ओहि मास मे अगर बढ़िया से ओकरा खान पान अहाँ नहि देलियै तऽ अहाँके एटीएम पिने नहि भेटत, कमजोर भऽ जायत। ओहिसे पशु के सबसे पहला दिक्कत ओहिमे होयत कि अहाँके ओकर जड़े नहि निकलत। ओहिसे बचऽ के लेल कम से कम 2 मास पहिने ओकरा कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन ई एहिसँ सम्बन्धित जे टैबलेट छै ओहो दऽ सकै छियै। बहुत कम्पनी अहाँके

0: ओकर पाउडर बनबै छै, ओ अहाँके 2 किलो पाउडर ओकरा खुआ दियौ एकटा पुड़िया सुबह शाम, ओहिसँ भी अहाँके बस जे छै से जर आसानीसँ खसि पड़त आ कोनो तरहके इन्फेक्शन नहि होयत।
1: एकटा आरो रोग होइ छै दुधारू पशुमे जे गर्भाशयमे कोनो तरहक संक्रमण भऽ गेल, इन्फेक्शन भऽ गेल, जकरा गर्भाशय शोथ सेहो कहल जाइ छै, ई किया होइ छै आ जँ भऽ गेल तऽ एहि लेल सामान्य रूपसँ की करक चाही?
0: दू तरहके गर्भाशयमे इन्फेक्शन दू तरहके होइ छै, एकटा तऽ जे नहि बियाएल अइ ओकरोमे होइ छै इन्फेक्शन, जाहिके चलते ओ पाल विलम्बसँ खेलक, पाल खा कऽ उलटि गेल रहि रहि कऽ। गर्भाशयमे अहाँ देखबै कि उज्जर रङ्गके या पानि रङ्गके, एकटा बात जानि लियौ कि कोनो सामान्य पशुके जे निगार अबै छै जागके, ओ घोंघाके फुरबे ओकर जे पानि जेना खसै छै तहिने पानि खसै छै। आब ओहिसँ कनिको अन्तर पड़लै, मलमाट भेलै या दुधा मने दुधिया रङ्गके भऽ गेलै या पस रङ्गके भऽ गेलै, एहिके मतलब ओकरा इन्फेक्शन कतौ ने कतौ से चलि गेलैए। ओ इन्फेक्शन 3-4 तरह से जाइ छै, नीचामे बैसल अइ जतऽ ओ गोबर लागल छै, गंदगी लागल छै, दोसर मवेशीके निगार खसल छै ओ ओकरामे सटि गेलै, ओकरामे चलि गेलै, या कृत्रिम गर्भाधानके कालमे जँ ओकर इंस्ट्रूमेंट सही से स्टरलाइज नहि रहलै, जे दोसर पशुके जे इन्फेक्शन छै ओ सीमेन डालै छै तखने ओकरा बजदानीमे चलि जाइ छै। तेसर जँ अगर साँढ़ से अहाँ पाल खुआबै छियै तऽ साँढ़मे भी इन्फेक्शन बहुत तरहके रहै छै जे ओहिमे चलि जाइ छै। दोसर दुधारू पशुमे भी इन्फेक्शन होइ छै बजदानीमे, जेना ओकर जर सहीसँ नहि निकललै या जे कनि बचलै कस ओकरा ओहिमे सड़ि गेलै, जाहिसँ ओकर व्हाइटिश डिस्चार्ज अबै छै, एहि लेल ओकरा बढ़िआँसँ 3 दिन कम से कम 3 दिन ओहिमे लिक्सेन या आओर तरहके ऑक्सीवेन बहुत तरहके होइ छै एंटीबायोटिक, ओकरा 3 तरहके एंटीबायोटिक दऽ कऽ 3 दिन कमसँ कम दियौ, विटामिन ए के इंजेक्शन दियौ, ओकरा बाद नियोमाइसिन सल्फेटके सुई दियौ, ताकि ओकर बसदानी जे छै से दुरुस्त भऽ जाए आओर अगला बेर पाल खाए तऽ कोनो तरहके ओकरा शिकायत नहि होइ।
1: एकटा समस्या दुधारू पशुमे होइ छै रिपीट ब्रीडरके, जे बेर बेर अहाँ पाल खुबै छियै मालजालके मुदा गर्भधारण नहि करैए।
0: रिपीट ब्रीडरके जानि लियौ 3 तरह, ओना 3 तरहके होइ छै, लेकिन अहाँ 2 तरह पर मेन ध्यान दियौ। एकटा देखबै अहाँ जे 21 दिन पूरा नहि भेल आ ओहिमे जे छै से मवेशीके निगार ठीक आबि रहल अइ, ठीक से जागि रहल अइ आ तैयो 21 दिन पर उलटि गेल, ओकर कारण छै जे अंडा शुक्राणुके अंडासँ जे संयोग भेलै, जे जायगोट जे बनलै ओकरामे कमजोरी छै, या तऽ ओकर उपरका जे परत होइ छै ओ कमजोर भऽ गेल छै, या पशुमे कोई न्यूट्रिशनल अभाव छै, जाहिके चलते ओ 21 दिनसँ पहिने ही ओ जे छै से फेर रिपीट कऽ जाइ छै, ओ मरि गेल आ ओ रिपीट कऽ गेल। ओ पाल खलकैए लेकिन तैयो ओकर पोषण सहीसँ नहि भेलै, अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ कहै छै ओकरा ईईडी, जे ओ पोषण सहीसँ नहि भेलै जाहिके चलते ओ 21 दिनसँ पहिने ही ओ फेर जागि गेल। दोसर कारण होइ छै कि ओकरा बजदानीमे कोनो तरहके इन्फेक्शन छै, जाहिके चलते जखने ओ सीमेन गेलै अंदरमे ओकर स्पर्म ई भेलै फर्टिलाइज भेलै कि ओ की करै छै, ओ कीड़ा ओकरा पर अटैक कऽ देलक आ ओकरा मारि देलक ओकरा अंदरमे, ओहूसँ ओ बेसी बार बार ई होइ छै। तऽ पहिलके इलाज भेलै जे ओकरा अहाँ विटामिन ए डी ई ईसब आओर ओकर हार्मोन किछु अबै छै ब्रुसेलिन ग्रुपके, ओ अहाँ 2.5 ml पाल खाएसँ पहिने दियौ, 2.5 ml पाल खाके 6ठा दिन दियौ आ ओकरा मिनरल विटामिनसब मेन्टेन करियौ 21 दिन तक। दोसर भेलै जे इन्फेक्शनसँ होइ छै ओकरा अहाँ बजदानीके लुगलसँ पोटाससँ 3 दिन कमसँ कम साफ करा कऽ, बजदानीमे यूनिमाइसिन जेंटामाइसिन कासिन ईसब एंटीबायोटिकके 3 दिन दियौ, सङ्गहि विटामिन ए के इंजेक्शन ओकरा दियौ मसलमे, ताकि ओकर यूट्रस नॉर्मल होयत आओर 1-8 मास रेस्ट लेलाके बाद ओकरा पाल खुअबियौ ताकि ओ पाल रहि जाय ठीकसँ।
1: डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी, अपने मालजालमे जे संक्रामक रोग सब होइए ओकर लक्षण आ सामान्य उपचारके सम्बन्धमे पशुपालक भाइ लोकनिके खूब सुन्दर आ नीक जानकारी देलियनि, ताहि लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनिल जी, सङ्गहि सब श्रोतागणके।
2: एखन हमरा लोकनि ई भेंटवार्ता सुनलहुँ, विषय छल पशुओंके संक्रामक रोग एवं उपचार। भेंटवार्ताकार छलाह डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा आ हिनकासँ गप कऽ रहल छलाह अनिल कुमार कर्ण। दुनू गोटाके बीच भेल ई गपसप सुनलहुँ जे पशुमे संक्रामक बीमारी आ एकर उपचारक की उपाय अछि। आब हमरा लोकनि इहो ध्यान दी जे जखन कखनो संक्रामक बीमारी होयबाक संभावना रहे तऽ टीकाकरण करेबाक

0: चाही। विशेष रूप से एखन खुरपका मुँहपका के टीका देल जा रहल अछि, सरकार द्वारा एकर टीका निःशुल्क देल जा रहल अछि। पशु के रखनिहार जे किसान भाई बहिन लोकनि छथि हुनका लोकनि के एहि गप पर ध्यान देबाक चाही जे टीकाकर्मी घरे पर जाकर दलाने पर जाकर पशु के निःशुल्क टीका देता। आ अनिल भाई अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर संपन्न भ रहल अछि, तसने ही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि से चलबाक आज्ञा लै छियनि। नमस्कार अनिल भाई।
1: नमस्कार उगना भाई।

अभी आप सुन रही थी खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

0: वाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगम, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
6: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
5: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
6: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें।
7: संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
8: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया

0: जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते। भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा, पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मतगणना के पहले राउंड से ही जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली थी। यह बढ़त 31वें राउंड तक बरकरार रही। उन्हें कुल 49.23% मत मिले। भाजपा के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 34.4% मत मिला। तीसरे स्थान पर रही राजद की रेखा कुमारी को 10.4% मत मिला। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। भाजपा को 35 वर्षों बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव में कुल 34.31% मतदान हुआ था, जो वर्ष 2010 में अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र का अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और रंग अबीर लगाकर बधाई दी।

0: पार्टी के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के लिए बांकीपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।
1: बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए।
0: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है।
2: जिन लोगों ने हमारे लिए ये जीत दिलाई है, बांकीपुर की जनता का एक स्वर से हम सब जनसुराज के लोग धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बांकीपुर में लोग अब बदलाव चाह रहे थे, जनता बहुत ज्यादा दुखी थी। उन्होंने इस बार मन बना लिया था कि इस मौके

0: पर बदलाव लाना जरूरी है, नहीं तो वो संकेत नहीं दे पाएंगे जो ऐसे समय में प्रजातंत्र को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए।
1: इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार मिलने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता होगी।
2: बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी जनादेश का सम्मान करती है।
3: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं।
1: जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि हार से न तो सरकार पर कोई असर होगा और न ही इससे राज्य की राजनीति ही प्रभावित होगी।
4: क्या असर पड़ेगा, 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है, असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। नहीं, नाराजगी नहीं है, ये वोट दूसरी जगह शिफ्ट होता है, दिख रहा है जो आरजेडी का वोट वो जा रहा है दूसरे तरफ और हमारा तो जो वोट है वो बिलाई है।
1: राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी।
5: राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था और राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर्स हैं और सब लोग बैठ करके आकलन निकालेंगे कि आखिर कहां गलती रह गई, कहां चूक रह गई, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के उठाती रही है और बात करती रही है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी की जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि वे जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी प्रशांत किशोर को हार्दिक बधाई दी। राज्यसभा ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पूर्णतः डिजिटल बनाना, भुगतान में देरी कम करना, कारोबार सुगमता बढ़ाना तथा कुछ प्रावधानों को अपराध मुक्त करना है। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा से दूरी बनाने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित हुआ, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि उसे सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, लेकिन जब चर्चा का अवसर मिलता है तो वह उसमें हिस्सा नहीं लेता।
6: आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था, इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात।

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 जुलाई से यह समाचार संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण FM रेनबो चैनल पर भी किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सारण जिले के अमनौर में सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। एक रिपोर्ट।
3: सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जिला मुख्यालयों से संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: मिथिला का लोक पर्व मधुश्रावणी आज से शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नव विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और नाग नागिन की पूजा अर्चना करती हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को सफल बनाने में बिहार की सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आज औरंगाबाद में आकाशवाणी संवाददाता कमल किशोर से बातचीत में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, परिचर्चा और संगोष्ठी आयोजित करने का आग्रह किया।
4: हम बिहारवासियों से अपील करना चाहेंगे और खासकर माननीय विधायकों से, माननीय विधान परिषद से, जो विधानमंडल के सदस्य हमारे देखकर उनकी बड़ी जिम्मेदारी अपने अपने विधान क्षेत्रों में निश्चित तौर पर परिचर्चा कर लोगों से मिलकर गोष्ठी के माध्यम से इस अभियान को एक आंदोलन रूप देने की जरूरत है। जब अभियान आंदोलन बनेगा तो निश्चित तौर पर जनता का सहयोग मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है नशा मुक्त भारत का साकार होगा।
1: नेपाल के दक्षिणी मैदानी और मधेश क्षेत्र में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह ने देशवासियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने मैथिली भाषा में लोगों से भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहने की अपील की।
5: हम आम नागरिक, नागरिक समाज, धार्मिक समुदाय, सब आदरणीय अगुवा, सब राजनीतिक दल आ जिम्मेवार संचार के माध्यम सबके धैर्यता आ संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा आ राष्ट्रीय एकता कायम राख के लिए सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहल छी।
1: मुख्य सचिव प्रत्यय

0: अमृत ने आज हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित होगी, जिसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा, पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
1: कटिहार जिले में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में कटाव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से पंचायत के 4 वार्डों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे करीब 200 परिवारों पर विस्थापन का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी कटावरोधी कार्य कराने की मांग की है। इधर कुर्सेला प्रखंड के तिंधरिया पंचायत में भी कोसी और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कटाव तेज हो गया है। कटावरोधी कार्य में लगाए गए बांस, रोल और बोल्डर भी नदी में बह गए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है।
2: जो फ्लड फाइटिंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, जियो बैग्स, ये सारा पर्याप्त संख्या में स्टोर कर लिया गया है। फ्लड कंट्रोल डिवीजन से जो रिपोर्ट ली गई है उसका हम लोग हर ब्लॉक में एक एक डिप्टी कलेक्टर को भेज करके उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं कि जितना उनके द्वारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल रखा गया फिजिकली अवेलेबल हो, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत मटेरियल वहां पर रश करा करके और कटाव को रोका जा सके।
1: कटाव की स्थिति पर स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने भी चिंता जताई है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से कटावरोधी कार्य कराने पर जोर दिया है।
3: बिहार सरकार से, बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो भी तरीका हो सकता है कटिहार को फ्लड से और कटाव से बचाने के लिए वो उपाय किया जाए।
1: कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाली मोरीग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वीकृति मिल गई है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के मोरीग्राम से शुरू होकर कटिहार के आजमनगर, कदवा और डंडखोरा प्रखंड से गुजरते हुए किशनगंज तक जाएगा। जिले में इसकी लंबाई करीब 38.5 किलोमीटर होगी और 46 राजस्व गाँव इससे जुड़ेंगे। इस परियोजना के पूरा होने से सीमांचल की सड़क संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी कटिहार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मनिहारी प्रखंड ने पूर्वी भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि कुर्सेला प्रखंड ने बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है।

0: आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में भी जिले ने उत्कृष्ट सुधार प्रदर्शित कर देश में 40वां स्थान हासिल किया है।
1: मनिहारी, कुर्सेला और बलरामपुर तीन है, इसमें से मनिहारी और कुर्सेला ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और बाकी जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो भी में भी सारे ब्लॉक है उसमें तो पूरा जिला ही, उसमें हम लोग प्रयासरत है कि इंडिकेटर्स में लगातार सुधार किया।
0: कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अहद के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था।
2: पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक हैंडलर के कॉन्टेक्ट में था, उससे सोशल मीडिया व्हाट्सएप और टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क में था और कोई बड़ी आपराधिक आतंकवादी घटना करने के फिराक में था। साथ ही साथ वो अन्य भी कुछ युवकों को इनकरेज कर रहा था कि वो इस नेटवर्क का पार्ट बने। इस मामले में आईबी की टीम, एसटीएफ की टीम, एटीएस की टीम, जो भी जितने भी एजेंसियां हैं जो इस पे काम करती है, वो सभी अपराधी से उन लोगों ने भी पूछताछ किया है।
0: कटिहार जिले में मखाना के मूल्य संवर्धन की दिशा में नई पहल शुरू की जा रही है। जिले में अब जल्दी मखाना से बिस्कुट, ठेकुआ, पेड़ा, बर्फी, जिलेबी सहित कई उत्पाद तैयार किए जाएंगे। किसानों और मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सबसे पहले समाहरणालय परिसर में मखाना उत्पादों का आउटलेट खोला जाएगा, जिसके बाद इसे प्रखंड स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: निर्णय लिया है कि इस 15 अगस्त को जो भी स्नैक्स या ऑफिसर्स में स्नैक्स होते हैं, वो सारा हम लोग जो मखाना का प्रोडक्ट है उसको यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को कलेक्ट्रेट या विकास भवन में जो हमारे एफपीओ जो बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं, उनको कोई एक स्थान भी हम लोग दें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, और उनको कोई डिस्प्ले करने के लिए स्थान भी देंगे जहाँ पर लोग जो आते हैं उनको जानकारी भी मिले और वो लोग चाहें तो इसको खरीद भी सकें।
0: कटिहार में सावन की पहली सोमवारी पर जिले के शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। जिले के ऐतिहासिक और मिनी देवघर के नाम से चर्चित गोरखनाथ धाम मंदिर, कष्टहरण महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गयी। गोरखनाथ धाम मंदिर और कष्टहरण मंदिर में भी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
3: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रही थी अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा को फिल्म आजा सनम में। गीतकार थे रानी मलिक, संगीतकार अरुण पौडवाल। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे संसद समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासेरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात

रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

0: इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार में अपने सबक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने सबक संग आजुक कार्यक्रम में हम छी राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकन, आजुक दिन विशेष दिन सब में सौ एक है। सौन मासक सोमवारी हेबाक कारणे आजुक दिन हमरा सब लेल विशेष बनल रहल अछि। तैं अपन कार्यक्रम में सेहो जो हमरा लोकनि एक गोट महेशवाणीक समावेश करी तऽ निश्चित रूप सँ नीक लागत। आउ ने कार्यक्रमक आरंभ एहि महेशवाणी सँ करैत छी।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: बंधु लोकनि, एहि संदेश से पहिने हमरा लोकनि स्नेहा झा कॉल महेशवाणी सुन रहल छलो। अगस्त मास के ई पहिल सिंगरहार अछि आ जखन अगस्त मास अबैत अछि तऽ निश्चित रूप सँ हमरा सबके स्वाधीनता दिवसक स्मरण भऽ अबैत अछि। आइ हमरा लोकनि जाहि स्वाधीन भारत मे स्वच्छंद रूप सँ रहि रहल छी, जाहि स्वाधीनताक संग हमर सभक जिंदगीक प्रत्येक काज भऽ रहल अछि, ओकर आरंभ भेल छल 15 अगस्त 1947 ईस्वी के। ई ओ ऐतिहासिक दिन अछि जे युग युगांतर धरि प्रत्येक भारतवासीक हृदय में अंकित रहत। अंकित मात्र एहि लेल नहि रहत जे 15 अगस्त को हमर सभक देश स्वाधीन भेल छल, अपितु एहि लेल सेहो जे ई दिन हमरा सबके स्मरण दियाबैत अछि जे हमर सभक पूर्वज लोकनि कतेक कष्ट सहलनि, कतेक यातना हुनका सबके सह पड़लनि, कतेक बलिदान देवो पड़लनि। बंधु लोकनि, स्वाधीनताक अमृत काल चलि रहल अछि आ हमरा लोकनि पंच प्रण केर संग अपन देश के आत्मनिर्भर ओ विकसित बनेबा में जुटल छी। अमृत कालक एहि अवधि में ई आवश्यक भऽ जाइत अछि जे हमरा लोकनि स्वाधीनताक युद्ध में बलिदानी भेल ओहि वीर लोकनिक पुण्य स्मरण कर

जिनकर पुण्य प्रताप सँ आइ स्वाधीन भारत में हमरा लोकनि सांस लऽ रहल छी। एहन असंख्य बलिदानी लोकनि छथि जिनका तऽ हमरा सबकेँ कि तऽ बुझलो नहि अछि वा बुझलो अछि तऽ हुनकर चर्च हमरा लोकनि कम कऽ पबैत छी। अमृतकालक ई समय एहने बलिदानी लोकनिकेँ स्मरण करबाक अछि, हुनका सबसँ प्रेरणा लेबाक अछि। बंधु लोकनि, ओना तऽ सम्पूर्ण भारतक लोक स्वाधीनताक युद्धमे बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेलनि, मुदा हमरा लोकनिक मिथिला सेहो आहुति देबामे सदति आगाँ रहल। हमसब ओहि महान विभूति लोकनिकेँ कोना बिसरि पाएब जे अपन जिंदगी राष्ट्र लेल समर्पित कऽ देलनि। एहने एक गोट महान विभूति छलाह पंडित छेदी झा द्विजवर, जे एक दिस स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय अवदान देलनि, ओतहि अपन लेखनीक माध्यमे जनसामान्य में चेतना जगा

0: के स्मरण करबाक अछि, हुनका सबसँ प्रेरणा लेबाक अछि। बंधु लोकनि, ओना तऽ सम्पूर्ण भारतक लोक स्वाधीनताक युद्धमे बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेलनि, मुदा हमरा लोकनिक मिथिला सेहो आहुति देबामे सदति आगाँ रहल। हमसब ओहि महान विभूति लोकनिकेँ कोना बिसरि पाएब जे अपन जिंदगी राष्ट्र लेल समर्पित कऽ देलनि। एहने एक गोट महान विभूति छलाह पंडित छेदी झा द्विजवर, जे एक दिस स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय अवदान देलनि, ओतहि अपन लेखनीक माध्यमे जनसामान्य में चेतना जगेबाक काज कयलनि। औने हिनके पर केन्द्रित स्वाधीनताक सिपाही केर पूर्व प्रसारित अंक सुनैत छी। स्वर छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक केर।
1: स्वाधीनताक सिपाही।
2: नमस्कार, आई एहि श्रृंखला में स्वाधीनताक सिपाही पंडित छेदी झा द्विजवर। जनिकले खनी क्रांति का धधरा उठबै छल दिन राति, जनिकले खनी क्रांति का धधरा उठबै छल।

भाति अत्याचारो धैर्य पराक्रम निष्ठा सकल न जाति। अत्याचारो धैर्य पराक्रम निष्ठा सकल न जाति। ना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेकशः भारतवासी अपन अवदान दिलायनि। प्रत्येक गोटे के अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण। हिनकही लोकन के अवदानक बल पर आई हमरा लोकनि स्वाधीनता के अमृत कालक उछाह मनयबा में सफल भ पाबि रहल छी। एही अवदानी लोकनि में अनेक प्रकार कर सिंह पुरुष सहभागी भेला। किछु सर्वसाधारण रहितो अपन घर द्वारि त्याग स्वाधीनता संग्राम में अपना के झोंकि देलनि। त किछु गोटे विभिन्न आंदोलनात्मक गतिविधि के माध्यम सँ विदेशी सत्ता के उखाड़ी फेकबा लेल जनमानस तैयार करैत रहला। तहिना बहुतो गोटे अपन ओजपूर्ण ओ प्रभावी वक्तव्य के माध्यम सँ जनता के संगोरैत रहला, आंदोलन के पुष्ट करैत रहला। किछु एहनो लोक रहला जे अपन प्रखर वक्तव्य के माध्यमे जनसामान्य के चेतना के आलोड़ित करैत रहला, तो अपन लेखन के माध्यम सँ सेहो एकटा वैचारिक क्रांति ठाढ़ करैत जनमानस में स्वाधीनता संग्रामक उछाह भरैत रहला। आ एकरा सभक संग एहनो व्यक्तित्व स्वाधीनता संग्राम में अपन सक्रिय अवदान देलनि जनिका में ई सबटा बिंदु एकाकार छल, समाहित छल आ ओकर अनुकूल प्रभावो आंदोलन पर पड़ैत रहल। पंडित छेदी झा द्विजवर एहने आंदोलनी छला जे एक दिस स्वाधीनता संग्राम में अपन सक्रिय अवदान देलनि, अपन दैहिक ऊर्जा केर उपयोग करैत रहला, ओतहि अपन लेखनी के सेहो एहि दिस आगा बढ़ौलनि। अपना लेखनी के माध्यमे जनसामान्य में स्वाधीनताक चेतना जागरण केर सफल प्रयास कयलनि। पंडित छेदी झा द्विजवर अपना समय केर स्वतंत्रता सेनानी लोकनि में अग्रणी छला। अंग्रेज लोकनि हिनकर गतिविधि सँ

0: त्रस्त रही छल आ तैं हिनका बहुतो यातना दिलक। आजीवन कारावास कर सजाए धरि हिनका भेलनि। अनेक खेप जहल यात्रा कर पड़लनि, मुदा ई सबटा अत्याचारो हिनका अपना पथ सँ हिला नहीं सकल, डोला नहीं सकल। सहरसाक बनगाम कर निवासी छला द्विजवर जी। हिनकर जन्म भेल छलनि 1892 ईस्वी में। पिता छलथिन बबुआ झा। द्विजवर जी के शिक्षा माध्यमिक स्तर धरि कर भ सकल छलनि, मुदा ई हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत आ उर्दू केर सेहो नीक ज्ञाता छला। एहि सब भाषा में ई अपन साहित्यिक अवदान सेहो देलनि आ एहि भाषा सभक माध्यमे स्वतंत्रता आंदोलन में ऊर्जा सेहो भरित रहला। सबसँ पहिने 1922 ईस्वी में हिनका बंदी बनाओल गेलनि आ हजारीबाग सेंट्रल जहल में पठा देल गेलनि, जतो 6 मास धरि राखल गेलनि। दोसर बेर 1930 में पुनः बंदी बनाओल गेला आ लगभग 2 बरख धरि जहल केर यातना सह पड़लनि। एहि दोसर जहल यात्रा केर क्रम में पंडित छेदी झा द्विजवर अपन जहल केर समय बंदी विनोद नामक काव्य पुस्तक केर रचना में लगौलनि। जहल सँ बहरैला तो 1932 में फेर सँ बंदी बना लेल गेला। एहि बेर तोड़ फाड़ कर विभिन्न गतिविधि में संलिप्त रहवा कर कारणे हिनका पकड़ी लेल गेल छलनि। एहि खेप 4.5 बरखक सश्रम कारावास कर दंड भेटलनि। 4म बेर 1942 में पुनः विध्वंसक गतिविधि के आरोप में हिनका बंदी बनायल गेलनि आ एहि बेर आजीवन कारावास कर सजाए देल गेलनि। मुदा 1947 में स्वाधीनताक सूर्योदय भेल आ स्वाधीनताक सूर्योदय कर प्रखर किरण हिनकर जहल यातना जहल कर बंदी बनेबा कर अवधि कर समापन कैलक। पंडित छेदी झा द्विजवर स्वाधीनता संग्राम कर संग संग सामाजिक गतिविधि में सेहो सक्रिय रहला आ आंदोलने कर क्रम में अनेक संस्था में सहभागी भ कऽ ओहि संस्था कर माध्यमे अपन गतिविधि के आगा बढ़बैत रहला। एहि क्रम में 1939 सँ 1941 धरि मधेपुरा लोकल बोर्ड केर चेयरमैन रहला। 1954 में सहरसा जिला बनबा केर बाद भागलपुर सहरसा जिला केर जिला परिषद केर सदस्य सेहो बनायल गेला। भागलपुर प्रमंडलीय ट्रांसपोर्ट कमेटी केर सदस्य सेहो निर्वाचित भेल छला। पंडित छेदी झा द्विजवर 1906 ईस्वी सँ साहित्य सर्जन में सक्रिय भ गेल छला। 1906 में जखन बनगाम में साहित्य सभा केर स्थापना भेल तो जे सदस्य लोकनि ओहि में बनाओल गेला ताहि में द्विजवर जी प्रमुख छला। एहि सभा केर माध्यमे द्विजवर जी केर पोथी सेहो प्रकाशित भेलनि। मैथिली गीत कुसुम, रावण अंगद संवाद आ छेदी सतसई केर प्रकाशन एहि संस्था केर माध्यमे कयल गेल। पंडित छेदी झा द्विजवर समाज में शिक्षा केर प्रचार प्रसार लेल सेहो सक्रिय रहला। 1941 में उच्च विद्यालय केर स्थापना में ई अपन प्रमुख भूमिका केर निर्वाह कयलनि। बहुत दिन धरि विद्यालय प्रबंध समिति केर अध्यक्ष सेहो रहला। पछाति ओ अपन मित्र अनंत झा केर नाम पर उच्च प्राथमिक विद्यालय केर स्थापना सेहो कयलनि, जकर नाम अनंत बोर्ड अपर प्राइमरी स्कूल राखल गेल। एहि महामानव केर महाप्रयाण 30 अगस्त 1972 के भ गेलनि। स्वाधीनता समर केर एहि अमर सिपाही केर चरण में कोटिशः नमन। एकरा संगहि सम्पन्न होइत अछि आजुक श्रृंखला केर ई कड़ी। आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।
1: स्वाधीनता सिपाही।
2: आकाशवाणी देश भर के

0: रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: बंधुलोकनि, एहि संदेशसँ पहिने हमरा लोकनि स्वाधीनताक सिपाही केर पूर्व प्रसारित अंक सुनि रहल छलहुँ। आ आब हमसभ चली शब्द विमर्श दिस। ओहिसँ पहिने ई गीत।

अब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि तुलाएब, सहसा उपस्थित होयब, घटित होयब। एहि लेल हमरा लोकनि तुलाएब शब्दके प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। रक्ष, रक्ष भेल शुभ संयोग, मने रक्ष रहल जे ओहि घातक गाड़ीपर नहि चढ़लहुँ, मने ई शुभ संयोग रहल। एकटा शब्द अछि रुक्ष, मने रुख खरखर, एहि लेल हमरा लोकनि रुक्ष शब्दके प्रयोग करैत छी। हिस्सक, हिस्सक भेल अभ्यास, आदत, लुतुक। तहिना एकटा शब्द अछि भकुआयब, भकमे पड़ब, निद्राक वेगमे चेतना शून्य जकाँ होयब। एहि लेल हमरा लोकनि भकुआयब शब्दके प्रयोग करैत छी। आ ठहरब, ठहरब भेल अटकब, बिलमब, टिकब, रुकब। एहि लेल ठहरब शब्दके प्रयोग करैत छी। आ एहिठाम हमरो सबके रुकऽ पड़त, मने कार्यक्रमसँ विदा लेबाक बेर भऽ रहल अछि, मुदा विदा लेबासँ पहिने अपने सबसँ एक गोट आग्रह, आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने सबकेँ केहन लगैत अछि, अपन प्रतिक्रिया, अपन सुझाव हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही। पत्र द्वारा जँ अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पठबऽ चाहै छी, एहि लेल हमर सबक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो अपने लोकनि ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। तऽ एहि आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि अबैत रहत, हमरा यानि राकेश चंद्र नंदनकेँ अगिला भेंट धरिक लेल देल जाओ विदा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप

0: कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा

0: दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
1: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में 2D फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा

0: seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी, छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर आला डी के शिवकुमार ने 19 नए वुजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। POJK में रात में सूरत हाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाखर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में यह बिल अहम कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकन की जानिब से जानबूझकर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। तहम शोरगुल और हंगामा आरई के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा आरई के दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाज़ों के इजाले के तरीक़ेकार को आसान बनाना है। جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر

0: सईदोव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफद का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरका सकाफत ने बाहमी शराकत दारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मसर्रत किया कि उज्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के राब्तों को बेहतर कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले बरसों में तौसी हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियोर सईदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक्वामी और इलाकाई मामलात पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तिजारत के ज़िम्न में एक जैसे नज़रियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात ने बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा ज़िले में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी MLA और गुजरात के साबिक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वोटों की गिनती के तमाम 20 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ दो उम्मीदवार ही थे, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। इस सीट पर तवील अरसे से बीजेपी के रुकन कानून साज असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतखाब जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
0: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से शिकस्त दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से सबकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड्स तक जारी रही। उन्होंने मजमूई तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि RJD की रेखा कुमारी को 10.45% ही वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 साल में बांकीपुर असेंबली हलके में पहली मर्तबा हार का सामना करना पड़ा। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला DK शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीर

वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिव कुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निज़ाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाए।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए
0: जी,
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारण वर्ष है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं

0: कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो ये दो चीजें याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी।
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
1: जी।
2: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
0: विपिन जी आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं है, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज्ड बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा कि मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको

0: और धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन यह है, छोटी लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसे मांगना है, अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं। प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से रवि। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी, सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ, साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी,
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ, जो भी हमारा टीम है।
1: जी,
3: मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग पीएफ करता है, और वो पैसा इनसिक्योर हो जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं, और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक।

0: एक आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से?
1: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी।
1: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं, इनडायरेक्ट क्या अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है, हम राजनयिक संबंध में तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितनी मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
2: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
0: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा
2: जी।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है?
3: नमस्कार
0: जी।
2: जी नमस्कार,
3: मैं विजय कुमार स्वामी, गाँव बस्तुआ, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी
3: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
0: जी,
3: मेरा बटन का फोन है।
0: वेरी गुड।
3: अरे बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है क्या, ये सवाल मेरा है।
2: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
2: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए, तो आप सुरक्षित तो हैं। लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे

0: चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले तीन काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है। तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे। तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक चलते
1: हैं। में जाना चाहिए
0: भाई, बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आप क्या फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीजरीज है, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत, और अगर वो नहीं

0: करता है, तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
2: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजेक्शन जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे OTPs आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है, तो आप उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी,
3: और मेरा ये प्रश्न है जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

31.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अमल का नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपना फोन नंबर बता दें, 9430029353। एक बार फिर से फोन नंबर नोट कर लें, 9430029353। और अब देखते हैं हमारे श्रोता सबसे पहले किन का कॉल लगा है। हेलो, नमस्ते जी, अपना नाम बताइए। इंदौर से। पहले अपनी फरमाइश बताइए। सावन का महीना, पवन का किशोर। जी हाँ बिल्कुल, सावन का महीना है और आज पहला सोमवार भी है ना, तो ये गाना आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पहले बताइए अपने आसपास के बारे में, क्या सब करती हैं? नहीं, बारिश तो यहाँ भी नहीं हो पा रही है, बादल तो दिखता है। जी जी, और अपने आसपास की जी जी जी बिल्कुल। बिल्कुल पर्यावरण जी हाँ, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखना होगा, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने होंगे। चलिए, आपसे बातें हुई, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: और अब देखते हैं अगला कॉल। हेलो,
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, हेलो आकाशवाणी में आपका स्वागत है। जी जी जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है ताहिर हुसैन, हरी भवन से बात कर रहा
0: हूँ। अच्छा अच्छा, और अपने आसपास के बारे में बताइए।
1: हमारे आसपास में क्या कहेंगे सर, बुरहान नल कल सब चला गया, तो बल का पानी का आशा है। देखिए आज ये भगवान क्या कर रहे हैं, रात में लग रहा है मृत्यु बसते बाद हो सकता है कि नल में पानी आ जाए कल में।
0: जी,
1: और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं।
0: आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं?
1: नहीं नहीं, बारिश नहीं, बारिश से घर हो रहा है, अक्का दुक्का सही पड़ रहा है, लेकिन बारिश का दाम मुश्किल है।
0: सावन
1: झुमझुमा बारिश होता है
0: जी, इस महीने में जो बारिश आपको चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना?
1: जी नहीं नहीं, सावन महीना का तो बारिश तो नाम ही है ना, इस बार सावन में बारिश नहीं हो रहा है तो बहुत हमें तबाह है।
0: अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी मेरा फरमाइश जीवन मृत्यु जीवन और मृत्यु श्रीमत गाना सुना, ये दिल्ली सितारों का आंगन हो गया।
0: आवाज मोहम्मद रफी
1: जी, अरुण जी मास्टर साहब हो गया।
0: जी हाँ, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी नमस्कार, बताइए अपना नाम।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आपका वार्तालाप कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। क्या सब करते हैं?
1: मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और किसान बाड़ी है इसके केंद्र से आपके केंद्र प्रोग्राम आते हैं, बहुत बेहतरीन लगते हैं, एक नंबर से आप लोग करते हैं। और ये मैंने आज बहुत दिन बाद कॉल लगाई, कौन सा हो गए महीना, दो तीन महीना बाद कॉल लगाई, क्योंकि मैंने इसलिए लगाई, मैंने शोषण को मौका देना चाहिए और इसमें हम लोगों का हक बनता है
0: जी।
1: शोषण को जाए एक बार कॉल लग जाए तो एक दो महीने का अंतराल देना चाहिए, ये मेरा हक बनता है
0: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: छोटा नहीं छुड़ेंगे, अगर रोज रोज लगाओगे तो छोटा भी नहीं लाइन लगाएगी, फिर लाइन इतनी बिजी हो जाएगी, नहीं छोटा मिल नहीं पाएंगे, इसके फैसिलिटी लगती नहीं, तो एक छोटा एक बार लगा ले, फिर दो महीना के अंतराल बाद लगाना चाहिए।
0: वहाँ बारिश हो रही है?
1: मोरा बहुत मोरा हो रहा, बस बच रहा था मोरा।
0: खेती बाड़ी काम काज के साथ साथ आप हमारा प्रोग्राम तो कैसे सुनते हैं?
1: मैं व्यापार से ही दाना लगा दिए खेती बाड़ी में, अब तो सरसों की तैयारी करने वाला हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कावर यात्रा वाले रहेंगे तो उनको कहीं भी जाए तो मैं उसका समाज संभल के जाए, कहीं भी गड़बड़ी में ना जाए, तो ऐसा है शंकर जी की कृपा है तो बनी रहेगी सबसे, यात्रा यात्रा करना चाहिए
0: जी। बातचीत हुई, अपनी फरमाइश बताइए।
1: दरभंगा बहुत मशहूर, दरभंगा है वो बिहार का, तो बहुत अच्छा लगता है आपके दरभंगा में खेती, दाना नगर चुके होंगे, मक्का भी होती है और पहले से ज्यादा फसलें हो जाती है और बाढ़ भी ज्यादा आ जाती है दरभंगा में।
0: जी जी, अपनी फरमाइश बताइए।
1: और सर ये आपसे मेरी था, आप क्या आपका नाम कुछ भूल गए, क्या बताया था आपने?
0: मैं अमरनाथ ठाकुर बोल रहा हूँ।
1: हाँ ठाकुर जी, तो आप तो सर जी पहले भी ठाकुर थे, तो अब तो इतनी पहले और ठाकुर थे, ठाकुर लोग उनकी चलती थी कब टाइम पे, अब तो सब एक अब तो सब समान।
0: चलिए बातचीत हुई, अपनी फरमाइश बताइए।
1: अपनी फरमाइश है आना जाना लगा रहेगा और कैसे मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ आपके लिए, डेडिकेट करना संजय वर्मा है।
0: फिल्म का नाम है गिरफ्तार, आवाज बप्पी लहरी और शबीर कुमार की, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी। सुनिए अपनी।

0: फार्मसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आकाशवाणी दरभंगा से पेश किया जा रहा है। श्रोताओं, हम आपको अपना फोन नंबर एक बार फिर से बताते चलें, 9430029353। और अब देखते हैं ये हमारे कौन से श्रोता हैं। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: जी, हाँ बोलिए, अपनी आवाज आपकी आवाज आ रही है
1: जी। सर नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं सर।
0: जी क्या सब करते हैं?
1: जी सर सिलाई का काम करते हैं।
0: जी, और वहाँ के बारे में बताइए कुछ।
1: जी सर यहाँ के बारे में, अभी बारिश हो रही है, काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। अब की बार मानसून भी थोड़ा लेट आया है, तेलंगाना में बारिश कम हुई है। अब की बार किसान भी परेशान है और जानवर भी परेशान है।
0: जी
1: तो आज ही से स्टार्ट हुई है बारिश, अभी तो इससे पहले थोड़ा स्लो स्लो हुई थी, फिर अच्छी बारिश नहीं हुई, आज ही बारिश स्टार्ट अच्छी हुई है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और साल के एक जैसा मौसम रहता है तेलंगाना में। अभी बारिश हुई है तो थोड़ा ठंडी हो गई। जी सर जी, अपने दरभंगा में बताइए आप क्या हाल चाल है, बारिश हो रही है?
0: जी यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बारिश जो है वो जो होना चाहिए अब तक नहीं हो पाई है।
1: वैसे इधर भी नहीं हो पाई सर, और एक्चुअली हम रहने वाले बाराबंकी जिले के हैं उत्तर प्रदेश के
0: जी,
1: तो उधर भी सर वैसी बारिश नहीं हुई है। इस बार थोड़ा मानसून लेट आया और थोड़ा प्रकृति से छेड़छाड़ भी हो रहा है ना सर।
0: बिल्कुल,
1: पौधे काटे जा रहे, लगाए कम जा रहे, काटे ज्यादा जा रहे, हम लोगों का आती है उसमें तो अपना रंग रूप दिखा रही है प्रकृति।
0: बेशक प्रकृति का संबंध जो है हम आपसे सीधा सीधा है, और उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है
1: जी वही,
0: तो उसका
1: आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि अभी सावन स्टार्ट हुआ, बारिश स्टार्ट हुई तो लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि आने वाले कल में दिक्कत ना हो सर।
0: बिल्कुल, ये बारिश का महीना है और ऐसे में पेड़ पौधे लगाना बड़ा ही आसान है, तो जहाँ कहीं भी वनों की कमी है, पेड़ पौधे कम हैं, हमारे आपके प्रयास से पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और फिर हम आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए बातें हुई,
1: जी सर
0: अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी सर एक मूवी है आई मिलन की रास, उसका एक सॉन्ग है सावन का महीना आया।
0: जी हाँ, आवाज अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: आपके प्रोग्राम में मेरी पहली कॉल है और आपको फोन उठाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें आगे भी कॉल लगाएंगे, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो।
0: जी। हाँ बताइए अपना नाम।
1: मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ श्रीमान
0: जी। राम कुमार जी बताइए अपने बारे में।
1: जी। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ।
0: जी
1: लगभग 18 वर्ष पूर्व मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ
0: जी
1: जी। और
0: अभी
1: फिलहाल आपके प्रोग्राम को मैं सुनता रहा हूँ और दिनों से चलाता हूँ, फोन भी लगाता हूँ और लग जाता है, बड़ी खुशी होती है। आज भी वही बात है, बहुत
0: आपका
1: खुशी हो रही है कि आपसे वार्तालाप हो रही है।
0: जी
1: जी सर।
0: हमें भी खुशी हो रही है। हमें ये बताइए अवकाश ग्रहण के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं?
1: वो तो समझिए कि सरकारी नियम है, उसमें तो जाना ही है, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगल बगल में एक दो विद्यालय हैं, यहाँ पर जो कल्याण विभाग का विद्यालय है, इस विद्यालय में यदा कदा मुझे बुलाहट भी रहती है, और फिर जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस, इस अवसर पर बुलाहट हो जाती है। मैं जाता हूँ वहाँ पर, कुछ बच्चों को बताता हूँ, इस तरह समय व्यतीत हो जाता है। जी सर।
0: परिवार समाज में किस तरह की भूमिका है अभी?
1: मेरी अपनी भूमिका करें ना, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: हाँ सामान्य है, जब जो छोटे छोटे बच्चे कभी आ जाते हैं उन्हें कुछ बता देता हूँ, और भी समाज के लोग हैं वो इसलिए मिले हुए रहते हैं और अच्छा बर्ताव भी करते हैं, मन प्रसन्न रहता है ऐसा करके, क्योंकि वो तो हमारा संस्कार में समाया हुआ है बच्चों को शिक्षित करना।
0: जी
1: जी जी
0: राम कुमार जी बातें हुई, अपनी फरमाइश बताइए।
1: ये पूर्व कहानी है, हकीकत फिल्म है। इसमें लता जी का है कि जरा सी आहटें होती है तो
0: जी
1: दिल सोचता है कहीं
0: गीतकार हैं कैफी
1: ये हूं
0: आजमी
1: तो नहीं।
0: और संगीतकार हैं मदन मोहन।
1: जी सर,
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।
0: जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार भैया।
0: नमस्कार,
1: हम बोल रहे हैं कादिर अली बोल रहे हैं, नाहर मंटला जिला मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: जी हाँ, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए।
1: जी जी धन्यवाद सर।
0: अपने आसपास के बारे में बताइए।
1: सर यहाँ तो बहुत अच्छा था, बारिश भी हुई, अच्छा हुई है बारिश मधुबनी जिला में।
0: आज बारिश अच्छी हुई है।
1: जी जी सर,
0: तो ये तो खुशखबरी है ना?
1: जी जी।
0: जो खेत से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहान से, अभी सावन का महीना है और ऐसे में बारिश का होना बेहद ज़रूरी है। और सब बताइए।
1: क्या सर अपना बताइए सर।
0: फिलहाल आपके लिए। जी हाँ बोलिए।
1: बहुत दिन के बाद अब आते हैं सर प्रोग्राम में।
0: समय के साथ चलना होता है कादिर भाई।
1: जी जी।
0: चलिए पहले अपनी फरमाइश बताएं हमें।
1: आई एम को राजा आराम सुनिता सुना दीजिए, ओ खिड़की वाली।
0: आवाज मोहम्मद रफी की।
1: जी जी।
0: गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: जी नमस्कार भैया।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, बताइए।
1: आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है कटी पतंग और गीत की बोल है प्यार दीवाना होता है, गायक किशोर कुमार। सबसे पहले गीत आपको आकाशवाणी दरभंगा में जुड़े सभी लोगों को, हाल वक्त रेडियो में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज के श्रोताओं को डिलीवर करूँ सर। और सभी के धन्यवाद। आप सुना दीजिए कटी पतंग का किशोर कुमार जी का आवाज में ये प्यार सा गीत।
0: जी हाँ, आपको सुनवा रहे हैं। पहले अपने बारे में बताइए।
1: मैं सर एसएससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन में सर्विस करता हूँ और 4-5 बजे घर आता हूँ सर, और कई केंद्रों में जुड़ता हूँ, उसमें ईमेल में, लाइव में, और उसके बाद प्रसारण भी सुनता हूँ सर। और ये मेरा शौक रेडियो का है, करना सर, और उसका प्रसारण भी सुनना, सब ये सब मेरा काम है सर।
0: हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?

0: पहले तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छा लगता है सर, और आपको केंद्र का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जो लाइव फोनिंग कार्यक्रम जो होता है सर, ये बहुत अच्छा होगा सर, जो सोमवार को रात
1: समय समय पर आप अपनी सुझाव जो है हम तक पहुंचाते रहें, और हम इसी तरह आपके लिए प्रोग्राम तैयार करते रहें, सुनवाते हैं।
0: मेहनत करते हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, मैं रत्नपट्टी दरभंगा बिहार से प्रशांत कुमार सतरंगी बोल रहा हूँ। कमलनाथ जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को श्रावण मास की पहली सोमवारी की भगवान भोले को समर्पित ये पर्व आज का जो है वह सभी लोगों को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान भोले से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो।
0: प्रशांत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और समय बहुत कम बचा है, पहले अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दें।
1: जी, आज मैं सुनना चाहूंगा, चूंकि शिव भगवान शिव का चारों तरफ माहौल है, मंदिर में शंख घंटे बज रहे हैं, तो इस तरह के वातावरण में भगवान शिव को समर्पित ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यह गीत सत्यम शिवम सुंदरम का सुना दें तो आज का यह कार्यक्रम बिल्कुल सटीक समय सामयिक साबित होगा।
0: जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, आवाज लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला

0: एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said,